印度德里广播电台，现在我们播送外国这部电影的歌曲。

要打倒涅槃。打倒涅槃有八道。打倒涅槃的八道是：争见，对佛教真理的正确见解；争思维，

印度德里广播电台听众朋友们，现在我们播送曼哈尔苏菲德卡维达唱的歌曲

印度德里广播电台，听众朋友们，请收听 Mahendra Kapoor 和 Suresh 唱的歌曲。

0: 印度特里
1: 第八。यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 91।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है, सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

एकनवतिसहस्र मेट्रिकटन्मितं माष अथ च अष्टादशोत्तरसप्तशताधिकैकचत्वारिंशत्सहस्र मेट्रिकटन्मितं कलायक्रयणस्य अनुमतिः दत्ता. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति. नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्. तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः.

ही मम्मा तो सी पंगुना ने मेरिया सस्या जब की अन्ना कनक बदुसिया जी बावा जमा बजस्ता हूँ जेल जाता गाँव की इंजा मंगल जकन उदुगे दजम टूर्नामेंट FIH Women's Nations Cup di Sajan Jia Badu. Mereka akan menghadapi Chile di babak semifinal besok. Ini adalah berita Sajan Cup ni. Perdana Menteri

पन्नाडा मशागतीक हुबुंगान अंतर्नगर हल्ल्यांची तंतुकानोजे पड्डांगण समता नामुनकिनी कपच्या मंजडी समापन दिन पड्डांगण प्रधानमंत्री मंगतगन बा सत्यापनगर मंग इंगिनकन रानताई पासुकन यंग अंडरजन कमितान यंग स्टाबिल सत्यापनगर नगर मंचारी मित्ता यंग दपा डिपच्या अंतुक जंकपन जंग उजान्या पाकमोदी मंगतगन बाबा नगरन्या सातनी बाद इंटरव्हेन्सी डिपत बगी सेक्टर यंग अकान मंडरंग पतुमान इनवासी जन पल्युंग बगी गेनरासी यंग मंदतंग या मन्यभूत इनी सभागाई पिरियोडे परनंतु दयम प्रजनन इंडिया जिमना स्पिरासी मंचपे तिंकत यंग यवी तिंगी पाकमोदी मंगतगन बा दयम पतमान गेतुजुजी अभियान या मनकनकन पंतिंग्या कमितान यांनी जी दसरकन पडा कपचयन प्रधानमंत्री मन्यतकन बा पसंत निंजाऊन तू कथते गे तुजू संगत जयास तथा कय या दुनिया हन्याकन इफेक्टिव जिका बसिपत इन्क्लुसिव या मंगतकन बा पतुमन दुनियाकन बदकल्याण जुतन जिका जी दसकन बद समान जनतकन योगी अकन बनर बनर बदमान फात बागी उमत मनुष्य जिका जी दसर्य कपचयन पाकमदी मंगतकन बा दुनिया सातिनी मंगयमी मसा को तिड़ा पस्तियन जन जिसरूपसी प्रधानमंत्री मन्यतकन बा जी तंगा मसा मसा पनु तंतंगानी कमितान अंतरा प्रांसिस चन इंडिया सुरा मंजरी पिजाद यं क्वात बागी कपचयन स्थाविजितास चन कर्ज समा या मंगतकन बा कदुआ बजा कदुआ नगर सुडा मनिंकातकन हुबुंगन मदका कतिंकात कमितान स्ट्रॅटेजीस दुनिया कुसूस पाकमधी मंगातकन बाबा कदवा नगराकन मयुंचुरकन सचजीत तिसना तहमदपान सचजीत इनियाकन बदकन तिबुसी दयम मंजमिन कतानन आईत जनपांगन दुनिया तंबानिया पाकमधी मंगातकन यातिवाजी प्रांची सात पमदिंतान्य सुडा गन्ना बदुस्या द्वापजस्तम यहाँ मन्य बुतकन बा इंजा सुडा मंगा जमी परतुमान चांस्पर माटिव जीपत बगई सक्त सजमा द्वापजस्तम तराई प्रधानमंत्री मंगा तकन बावा जी युआर परतुमान इकोनॉमी परजयनन इंडिया आड़या तंतंग पंबर दयान मस्यदकर जन चांस्पर मासी कहिडुपान सबजुमना पाकमदी जी संबोधन पसंद बंजोज मोदी अथवा भाज्य मोदी जन सजन भारत माता की जय कमुनिता सिंजा जी फ्रांसिस बरकुमपुर दयम जुमरिया बसर संभज मनोरिया कान श्रियोगन मोदी मोदी जन भारत माता की जय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मो पशिशिकन इंडिया सबके पुसत इनोभासी जन टेक्नोलॉजी दुनिया सात बरपिदत दी कतते विभाटक द्वारी बुद्धपुर नाम डी पारिस कमरिन प्रधानमंत्री मन्यतकन बा तकनोयोगी दपत मंडलंग कमाजन हन्यजिका डी डेमोक्रेटी सासी पाक मध्य मंगा जग पद इनवता दुनिया उन्तु बकर जा संबंध इंडिया जन्म मंगहदित कन मान पात बागी सुमा पियाक या जुगा मन्यति बा दयम सतु जकड़े तरे इंडिया सुडा मंगा जमी ट्रांसफर मासी पसात यंग डी जरंग अजय तकना योगी सेक्रेटरी एनर्जी बाजू जन तरबाजू कान संतोष कुमार सड़ंगी मन्यतकन बाबा इंडिया सुडा मंत्री सबगी सय सतु नगर तर्द पंडित दुनिया दयम बीडंग एनर्जी तरबाजू कान बरकत करंका कविजाकन यंग क्वा जन इंटरवेंसी पमरिंत यंग इनोवाती या मनेम पैकान हाज इनी सात बद विचार दयम डिस्कुसी मंगने कतानन एनर्जी मजजुई एनर्जी तर पादुकान यंग मदपकन बगियन दरी सेरी डिस्कुसी कमितन पंबंगनन हिजव जन बद कर्यान जुतन तो गेस जपे को सपुयु दिनी उदजी पाक सड़ंगे मने बुतकन बवा को मजन पसात इंडिया जी सेक्टर एनर्जी तर बदुकन सजमा सतुर्य कड़े तरह डिडुकुंग अजय बदबगे यंका सपति कौवाजीवन पंबयन एनर्जी तरबादुकन हताव दिने अभिज परचेज अभिजिगे संस
pedoman tender kompetitif serta kebijakan investasi asing yang sung atau FDI 100% menjadi jalur otomatis yang mengatakan bahwa program-program unggulan termasuk

सुपेम सूर्यगर मुक्ति विजय योजना जन पेम कुसुम सुड़ा मन पत कन रुमतंगा पतने जन पमरिंता नगर बगियान जिगर स्तोपन चंसिसी अनर की बसी संबारी मन रति मिसी हिजोगन हिजो नसी अनर पक सड़ंगी मन तकन ब इनिशियटिव तु अकन मंबन तु मंगुदंगी क तरगन तुंगन पड़ा बहन बकर फस यम पर सकयुगुस मंजुकुंग डी कार्बोनी ससी इंडस्ट्री जन मंपत क्वाद कतन एनर्जी या मन कन कन पयुन्य मोडेनी ससी जरिंगन यस्तरी पनिंकतन कमंपन प्रकिरन जन पन जड़ वयन पन दपन पन दकतन इकोनॉमी सीर कुयत सत पनिंकतन पंदनान इकयम जमी मंबंगन इकोसिस्टम एनर्जी तदबद कनियंग तंगू वकील प्रसिजन जड़ी भांस मन तकन बव अंकतन यौत अमेरिका सरकार सुड़ा मंग इंजिन का यविदि सोयुसिन कपई मयिंतस मंजु पयवन पयवन ईदन सबगयंगा पंचबुतन बियकड़यंग मधुपकन बगियन दादी कौसपकतन तो मंगाई पदन पग भांस मन पैगन हाईनि दजम सुबह तकयी मत पस टिगड़ पुती अतौ हुआ चौ सदैव मुन्यम पुतकन बवा किनि समगन बन्यक मिन्यक यंग मंग आयित मजयु सजाथर मुच वकिल प्रसिजन तस्वुद मंग तकन बवा ये विदरे द्वाबयस कम यम जुता बादज मिन्यक सुडा मयवते जयत पयद नितु पड़ा मयम सब युम्य पाक भांस मंग उं कपकन रन चनन यंतु बदतय क सुइस गुण मोय कुकन पंबिचरन तत्कै स क सपगतन ईदन नामुन यब्युम मंगतवी कपल कपन हाय इतु अकन तयक्षना या सब्युम ने दीपत किदकनंतु ममिम पिन पौदुंजिगन मंगनई पयक्षनन कसपगतन नंगन इदन यंग बत्त जनंतु मंगुदंगे चजंगन उदानियम यंग दीपचय तिंगि सतम मुजिकन कंबय ययु यिन तस्मिन्यक मजयु सयथर्मुच पढ़हरि सजस दुआ कपय तंकद मिन्यक बत्त यक दरी रंजन मयिन तसे ब्रकर मिजितर अमेरिका सरकार तन पर दिगन तिगन सबवन सितुस उ पयचक पयदन कमेसय मय पद कन बवा कपय कपय तु मंग अंकुत तत तिगा कमा दयापन जुता बादज मिन्यक मंता इदन समंत दैतु मीडिया पमदिनता इदन मन्यत कन बवा अक्तिवितास पयदन जी पयाबन पयाबन सयतन इदन सुडा कंबाजी नदमाय नामुन मनंब कन बवा सयतन मृतत बदाडा जीबवा पंगवसन जन कंडजी मिजित दीदन सता पयिंतसन मयजी जयुद आई भीताय तसबुद मसीम मामर युकन कोडी नसी यूई सुड़ा मन्य तुझु पद अतुदन बदु यंग मनोतापकन बता सुसिया मिनिमम पंगुनान मीडिया सस्याज पड़ा यम बजस्तान सब अयंग का कंप्रेंसिव यंग बतुजन मम पद क्वाद पर यंजुगन अनाग दीदुंग जिजिचाय कोपुतुसन ने डीएम बिज अय कविने टीवई यंग डीपिंपिन अय शेख मोहम्मद बिन रसिद अय मक्तुम बदसत कन कौतंतुअनितु अनक अनक डिबोसिया यम बजस्तान तिड़ाई डिंजिन कन मंबत अतो मंग अपदसिकन अकुन मीडिया सस्याय माउपुन मंगाक्सस फीतु इंटरक्टिव सपति मंबत उंगाहन बदकमेंटर मंबाइकन कंटेंट अतो बदगबंगन ग्रुप पब्लिक पंगुना उपदुस्या यमा बजास हिंगा नाम बजास ताउन अकन डिबिटकन अक्सर तदबतास नामुन हयान हन्या दिगन पन्नरपन यंका यंका पंग अमानन यंग कतत दजम चाबंग अयादगा होकी इंडिया मंगाया का नुदुगुया दिगन स्को तिगा दुआ पड़ा पतनिगन कतगा ग्रुप आप FIH उमेंस नेशन कप डिसजन जा बदु हरीनी बदुबकर तिगा को मुनंगन दादी तिगा पतनिगन इंडिया मम्मुन चकी क्यासे में ग्रुप आ जन मासु को सेमीफाइनल टीम न मदिका कन मंगला पिचय पड़ा हरी सप्तु इनेजा बदिता उत्तम प्रधानमंत्री इंडिया नरेंद्र मोदी मन तकन बव इंडिया के मंजूर सबके मित्र दुनिया यंग तत्परचय पेम मोदी मंग तकन तक न योगी हन्य तपद मंजर अंक मजवान जिका डी डेमोक्रेटी ससी यह जुगाम
മന്യതിപ്പതാൻ ചെക്കുന്ന യോഗി ദയ.

ससुरा जगून इंस्ट्रुमेंटल जन्या ताडी सोड्याचा सोड्याचा पंजाळ कमीचा चिकन कमेंटात यंग पर चुडूज प्रधानमंत्री म्हणत होते किसा पर्तुमान इंडिया डिकात ते घेतुजू ऐकू त्याच्या कमेंटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदविचार दयम ससी औटीच पर्तमा ममुजिकन पर्तुमान इकॉनॉमी यंग स इंबंग बसमा जनपद कल्याण बगी समूह पड़कत ते गे तुजू डी एवियन प्रांचे तंग तुजू बजास जूनी द्वारी बुद्ध प्रयोग नाम संबदी मंग अप्रेसियासी फकुस कत ते तु पड़ा पर्तुमन बसमा जनपद कल्याण जुतन प्रधानमंत्री मंचा तत्व डी तंग कतिड़ा पस्तियन दुनिया सातनी पसंद मंग नहीं पर्तुमान बद कल्याण जुतन अकन जी संबुद्ध बाइक सचा दुनिया या मान्यताकन बाबा पर्तुमन तिड़ा पोजे हन्य डी उकुद बदसत कन पेड़े बे आतो अंका पर जंगन मजाइन कन हादुस जिजिया दरी दंपक न्याता न्या तधाड़ा इंक्लूसिव डन क सहजाते दन समूह पियाक. प्रधानमंत्री मंच तदबा मंत पर्तुमन इंक्लूसिव इंडिया जुगा मंजरी पर्जमन बगी का तर्जीबतन इंटरनेशनल निया सबगई मना तचदमिन दजम प्रेसिडेंसी गे दोपजू इंडिया यंग मंगुन सुंग मोतो सतु भूमि सतु कजुअर्गा सतु मसद पान या मनम बकन बाबा पंदकतन सदुपजुगा मन दसारी पदंचन करी जो इकोनॉमी इंडिया तिमुर तंगा यदा पातो ए ई एम एच ए गुना मन पद कुआत जनते ही पासक पंचपतन कन पजुंग इन्वेस्टासी जन जापंगन कर जा सत्ता मंडल इनोवासी निगान मन्य जति दंपाग बुधु किसी जन कंप्लीक तधड़ अप नगर नगर ग्रवाय साउथ या मन्य दुकान सजीदरितास इंटरनेशनल जंतु मॉरिंग मॉड रिंगन कन बबन मरेका या मन्य दन कन अगर यंबग कौंगन इंटरनेशनल मंगंबंग कन मेकानिस्मे दुकुंगन गुना मंपत कुआत कौतानन इकोनॉमी नगर नगर बदकमंग या जुगा मन्य दुकान पर्तिमंगन प्रे कनेक्टिविटास यंग मंगबुंगन अफ्रीका अमेरिका लैटिन जन नगर नगर कपुजवन पैसिफिक दंगन पोया सदुपा ई एम एच ए उन्तु मो उजुड़कन भी सी ने प्रधानमंत्री मंग उसुकन पंबंतुकन कमितन मोबिलिससी इंटरनेशनल उन्तु पन चपातन कनेक्टिविटास जन पर जंगन अतो इम्पैक्ट यंग मो मादुकन मोड़े गे तुजु तयंता इंडिया चंद्रदासा कप अमेरिकन दरी नगर नगर ग्रवाय साउथ. प्रधानमंत्री जुगापद विचार दयम ससी आउटरीच बर्तमा ममास्तिकन पनरापन कच्च दसन बातन यंग अमन चपत चन इफिसिन पड़कत ते गे तुजु डेबिन प्रदंसिस पाक मदी मने रती बावा मेस्कीपन कच्च दसन बातन मधुपकन कोकुआतन ट्रांसफर माटे यंग बदपतंसी मंगुबादा पर अदबन मनुष्या तकन योगी इनी जुगा हदुस मंबर देकन मस्या दकात सदया मंचतत बव इंडिया सनंटियासा ममंजंग द्वंग सीबेर सबगे बदंग पब्लिक दुनिया प्रधानमंत्री मनकन कन बवा नगर नगर जम्मू कटे सदुस मम्मी के अक्सर तड़ा मॉडल ए यंग मंपू मंग अमन कन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मासी भीटाज मदका सता मंबंतु मदका मंगड़ा पियन चम्मन सीबेर दिया मन्य दुकान पंदकतन तद इंटीग्रसी दयम पंगम मंगन ए यंग मन्य इंबंकन आस्पेक्ट का सजमतन कचपतन जन इफिशियंसी सचरा बस समान. प्रधानमंत्री मन्य तकन बा ए हदुस मंपु मंगमंगन पचनसी मनुष्य मंपत कुआत क बवासन ममजी बगी मनुष्य जन्म इंजुंगी मातबाग मनुष्य सदया मनगस्कन बा इंडिया कन तदुस बकजा समन्दन

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना।

0: मापर पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था

0: जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिल-ए-ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायज़ा ले रहे हैं।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकाबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरिक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। गुज़श्ता 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फ़ाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एटानगर के देरा नुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एमक्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में, 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गाँव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो काफी हम लोग खुश है।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमद रफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया की एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की, जिसमें आबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वाइबर्टिक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि मस्नूई ज़हानत AI की तरक्की में सबकी शमूलियत, तहफ़ुज और अवामी मफाद के बुनियादी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। इस खबर को अखबारात ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3।

किलोमीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं डॉक्टर अमृत दिशा। आइए इनसे सुनते हैं सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। आपका साथ दिया है तबले पर बलजीत सिंह ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। कलाकार थे अमृत दिशा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे बलजीत सिंह। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लव इन टोक्यो के कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए जाते हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा पर। गांधी चर्चा के अंतर्गत ये वार्ता, विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार हैं निशा जिंदल।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वास्थ्य ही वास्तविक धन था, जो शरीर मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित था। वे योग को आत्मा से जुड़ने और शारीरिक मानसिक शांति के साधन के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि स्वच्छता पूजा के समान है। वे स्वच्छ मन शरीर और वातावरण को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि स्वास्थ्य की कुंजी हमारे भोजन में है। वे कम और सादा भोजन करने की सलाह देते थे। गांधी जी के लिए स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि शरीर मन और आत्मा की शुद्धि थी। वे मानते थे कि सच्चा स्वास्थ्य स्वयं के लिए अनुशासन और प्रकृति के नियमों के पालन से आता है, न कि दवाइयों से। गांधी जी योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि शरीर के नियम तोड़ने पर बीमारी होती है और प्रकृति ही उसे ठीक कर सकती है। वे मिट्टी पानी और धूप की चिकित्सा को बेहतर मानते थे। स्वस्थ शरीर मन और आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होता है और उसके सभी अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह आदर्श स्थिति है जिसमें शरीर स्फूर्तिवान मन प्रसन्न और आत्मा मुदिततापूर्ण होती है। स्वस्थ शरीर का अर्थ मोटा तगड़ा शरीर नहीं, अर्थात इसमें पहलवानों का अतिशय दौड़ने कूदने वालों का समावेश नहीं है, वरन इसका आशय व्याधि रहित शरीर से है, अर्थात वैसा शरीर जो सामान्य काम कर सके और जो मनुष्य बिना थकान के रोज 10-12 मील चल सके। उन्होंने तर्क दिया कि बीमारी प्रकृति के नियमों को तोड़ने का परिणाम है, तो प्रकृति ही इसे सुधार भी सकती है। उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास किया। वह किसी प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, पर बीमारियों की रोकथाम और उपचार की शक्ति में उन्हें बहुत विश्वास था। इसीलिए वे कहते थे कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ है शरीर की सहजता। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर रोगों से मुक्त हो और बिना थकावट के अपने सामान्य कार्य कर सके। गांधी जी कहते थे कि अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ है। योगासनों का अभ्यास करने से शरीर में शक्ति और लचीलापन बढ़ता है, साथ ही तंत्रिकाओं को आराम मिलता है और मन शांत होता है। आसन मांसपेशियों जोड़ों और त्वचा के साथ साथ ग्रंथियों तंत्रिकाओं आंतरिक अंगों हड्डियों श्वसन प्रणाली तथा मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। गांधी जी लंबी सैर के बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने एक बार कहा था कि वे प्रतिदिन 10-12 मील चल सकते हैं। वे चरखा काटना अनाज पीसना सफाई करना और बागवानी जैसे कार्यों को ही अपना व्यायाम मानते थे। उनके लिए मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी थी। वे प्रतिदिन नियम से प्रार्थना करते थे जो उन्हें मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती थी। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं, बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना था, जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जरूरी था। वे मानते थे कि बीमारी होने वाली मौतों से कहीं अधिक मौतें बीमारी के डर से होती हैं। इसीलिए मानसिक रूप से निडर होना जरूरी है। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे स्वयं अपना शौचालय साफ करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। वे गांवों को आदर्श बनाने के लिए स्वच्छता को अनिवार्य मानते थे। गांधी जी नशाबंदी के कट्टर समर्थक थे। वे मानते थे कि शराब और तंबाकू न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, बल्कि व्यक्ति की नैतिकता को भी नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में नशाबंदी को प्राथमिकता दी है। गांधी जी ने भगवत गीता के निष्कपट कर्म या अनासक्ति योग को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि व्यक्ति को कर्म फल की

0: इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। वे इसे गीता का संदेश मानते थे जिसमें कर्म करते हुए फल के प्रति निर्लिप्त रहना सिखाया गया है। गांधी जी के अनुसार योग का अर्थ आत्मा के साथ जुड़ना है। योग का उद्देश्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखना है बल्कि मन और आत्मा को भी शांत रखना है। योग का मतलब सिर्फ हिमालय में बैठकर ध्यान करना नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करना है। वे कर्म योग को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने के पक्षधर थे। महात्मा गांधी के लिए योग का अर्थ था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। महात्मा गांधी का योग पारंपरिक आसन प्राणायाम से भिन्न एक क्रियात्मक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन था जो मुख्य रूप से अनासक्ति योग पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। यह गीता पर आधारित उनकी व्याख्या थी जिसे उन्होंने कोसानी में लिखा। वे हमेशा सीधे और स्थिर बैठते थे जो उनके अनुशासित व्यक्तित्व को दर्शाता था। अनासक्ति योग महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन और जीवन शैली है जो मूलतः भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से अनासक्ति को प्रोत्साहित करती है। अनासक्ति योग कर्मों के परिणामों से भी किसी भी प्रकार के लगाव को त्यागने का अभ्यास है। ऐसा माना जाता है कि अनासक्ति के माध्यम से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नियमित योग अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि और रक्तचाप का सामान्य होना शामिल है। योग तनाव को दूर करने में और नींद को बेहतर बनाने में कारगर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य योग के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2014 में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी और 2015 से यह वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है जो स्वास्थ्य संतुलन और एकता का संदेश देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता जिसका विषय था योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। या

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

ولله جنود السماوات

Ma

يد الله فوق أكفاهم.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही

0: करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पता किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu today attended a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. The president, addressing the event, said the national mission was launched in 2023 and the state achieved the target ahead of schedule. She commended the state government for its significant achievement. She said it reflects the government's commitment to strengthening healthcare services and timely intervention for better healthcare outcomes.
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

만든 घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। शुक्रवार का दिन यानी खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर। कहते हैं धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है बल्कि उस सफर पर विश्वास रखने का नाम है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हमारे बुजुर्ग इसी विश्वास की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने समय के उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों का सामना किया और हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखा। उनके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा है, उनकी कहानियां हमारी धरोहर है। तो उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। अगले कुछ पलों तक हम साथ चलेंगे जानकारी और मनोरंजन की खूबसूरत यात्रा पर।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, ये गीत फिल्म थी वक्त। और अब बातें कुछ स्वास्थ्य की, कुछ योग की। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। विषय है बुजुर्गों का स्वास्थ्य। योग गुरु देविका श्रीवास्तव से बात कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज इस चैनल के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। आज हम लेकर आए हैं वो है वृद्धावस्था में करने वाले योगासन और किस प्रकार से आप योग से जुड़े। जब हम योग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक योग प्रशिक्षक की भी आवश्यकता होती है, तो हमने इसके लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को। देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
1: हरिओम सभी को, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है और मैं योगा शिक्षक और योगा विद्यार्थी हूँ।
0: देविका, बात पिछली बार बच्चों के की थी तो बच्चों का शरीर तो बहुत लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि लचीलापन खत्म होता जाता है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको करने चाहिए?
1: बिल्कुल, वृद्धों की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि वर्कआउट करके जो आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है वो आपके जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे उनको लचीला बना देती हैं, तो आपके मसल्स इजीली मूव कर पाते हैं। बट वृद्धावस्था में आप ज़्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी बॉडी मूवमेंट कम होती जाती है। आप रेगुलर लाइफ में ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जितनी एज तक आप काम करेंगे, जितनी एज तक आप अपनी छोटी छोटी चीजें भी खुद करेंगे, इतना आप कर सकते हैं। जब तक करते रहेंगे आपकी गाड़ी चलती रहेगी।
0: जी जी।
1: अपने वर्कआउट मूवमेंट बॉडी की रोकी, वहां थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी।
0: जी।
1: तो रेगुलर लाइफ में अपने डाइट मेंटेन कीजिए, पॉसिबल हो तो आप धीरे धीरे अपनी मालिश करनी शुरू कीजिए।
0: खुद ही मालिश करें?
1: बिल्कुल, अपने अच्छा। जैसे घुटनों की मालिश, क्योंकि घुटनों की समस्या तो वृद्धाओं में बहुत ज्यादा होती है।
0: तो अक्सर होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हड्डी की समस्याएं आती हैं।
1: बिल्कुल, बेसिकली वो समस्या हड्डी की नहीं है
0: जी,
1: हम समझ जरूर लेते हैं, वो समस्या आपकी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की है। आपकी बॉडी में लचीलापन खत्म होता है इसीलिए आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है।
0: हमारे वरिष्ठ नागरिक है, इनकी दिनचर्या किस प्रकार से शुरू हो?
1: सबसे पहले फ्रेश होना उनके लिए बहुत जरूरी है टाइम से, बिकॉज अगर उनका डाइजेशन इनडाइजेशन उनको हुआ तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो उसके लिए वो गर्म पानी पिए, किस कंडीशन में? मलासन में बैठ के, उकड़ू जिसे आप कहते हैं, उकड़ू आसन में बैठ के उन्हें गर्म पानी

0: पीना है
1: अच्छा,
0: जिससे, और फिर बैठे रहना है।
1: कितना पानी पीना चाहिए?
0: एक से दो ग्लास जितना भी उनकी कैपेसिटी
1: हो, जो आराम से पी सके।
0: बिल्कुल, डेढ़ से दो ग्लास तो वो कोशिश करें पिए।
1: हाँ,
0: तो उससे उनकी पूरी बॉडी एक बार में ड्रेन आउट हो जाएगी।
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे अपना जो आपका ब्रश वगैरह है वो करके कोशिश कीजिए आधे घंटे की योगासन आप करें, जिसमें आप बटरफ्लाई करें, फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग्स करें, पश्चिम उत्तानासन है, आप शीर्षासन तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, सपोर्ट लेके कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करें, क्योंकि जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स आएगा तो उनकी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा आएगी, ऑक्सीजन हर पोर में पहुंचेगा तो उनकी बॉडी चैनलाइज हो जाएगी,
1: ऊर्जावान,
0: तो वो बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे।
1: जी।
0: रोज आप करेंगे तो फिर आपको लचीलापन कम नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और जितना कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धाओं को अक्सर लोग बैठते टाइम तकिया खुद दे देते हैं, वो नहीं देना है उनको, वो उनके लिए उल्टा नुकसान देगा। कोशिश करिए कि उनको आप सीधे बैठने दें बिना तकिए के सपोर्ट के, तो उनकी बैक नॉर्मल रहेगी, बैक में अपनी वो जान ताकत बनी रहेगी। हर बार सहारा ले लेंगे तो फिर खुद सहारे की जरूरत पड़ने लगेगी।
1: एक अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि उस समय समय भी होता है थोड़ा सा।
0: बिल्कुल,
1: हम कहीं ना कहीं अपने मन को जो है उस परम सत्ता के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, अभी भी करते हैं, और उस उम्र में तो ज्यादा ऐसा लगता है कि अगर वो जुड़ाव हो तो अच्छा ही है। उसके लिए क्या कहेंगी, जैसे प्राणायाम वगैरह जो ध्यान करना किस तरह से कर सकते हैं?
0: वैसे तो देखिए, ध्यान करने के लिए और उस शक्ति से जुड़ने के लिए कोई एज नहीं है,
1: उम्र नहीं है।
0: वृद्धावस्था में उसको इसलिए
1: ना, ना उम्र की सीमा हो।
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल, उस अवस्था में इसलिए ज्यादा कहते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो स्ट्रेसलेस है।
1: अच्छा।
0: उनके पास अब किस चीज का स्ट्रेस?
1: हाँ।
0: पर उनके पास अब जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है
1: जी।
0: कि अब टाइम शायद कम हो रहा है, उन्हें ये टेंशन
1: काटती है। स्ट्रेस लेके नहीं चलना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमें तो जिंदगी को आगे ही लेकर जाना है, इस तनाव को नहीं लेना।
0: उनको अपनी परेशानियों से वे परेशान होते हैं कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, दवाइयाँ हैं।
1: थोड़ा सा ये जरूर है कि हमारी जो ये मशीनरी ज्यादा देखभाल मांगने लग जाती है ना,
0: तो वो निर्भर होने का डर उन्हें बहुत होता है कि अब वो बच्चों पे निर्भर है। तो वो कोशिश करें कि वो खुद पे ही निर्भर रहे, स्टेज में वो जाए ही नहीं। उसके लिए अभी से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज, परम शक्ति से जुड़ने के लिए वो प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके अंदर ही है
1: जी।
0: तो आप जब खुद को महसूस करना शुरू कर देंगे, खुद की आत्मा परमात्मा कहते तो जरूर है पर वो आत्मा और परमात्मा दोनों आपके अपने ही अंदर है
1: जी।
0: तो
1: ये बहुत सुंदर बात कही है देविका आपने कि वो परम शक्ति जो है आपके खुद में ही मौजूद है, आपके अंदर ही मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपके अंदर ही ईश्वर का वास है, और हर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास, वो अच्छा जो है तत्व है हम सब लोगों के अंदर, भलाई करने का है, किसी की अच्छा हो रहा है उसको देख के खुश होने का जो तत्व है,
0: तो जैसे आपने
1: किसी की मदद करने का तत्व है, वो ही ईश्वर का रूप है ना, तो वो हमारे अंदर ही है। हाँ जी, बहुत
0: तो
1: अच्छी बात कही आपने।
0: जैसे आपने बताया कि वो आपका ही रूप है, तो फिर उसके लिए सिर्फ वृद्धावस्था ही क्यों,
1: वो तो कभी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हर एज में कर सकते हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास थोड़ा समय जरूर होता है, तो उसके लिए वह प्राणायाम अपने लाइफस्टाइल में जरूर जोड़े, दोनों टाइम कर सके तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, एक टाइम भी कर सके तो बहुत अच्छा है। सुबह वो योगा करें एक घंटा, आधा घंटा, जैसे भी उनकी क्षमता है। उसके बाद छोटी छोटी आदतें जरूर अपने आप में अपना

0: एक टाइम भी कर सकें तो बहुत अच्छा है। सुबह वो योगा करें, एक घंटा आधा घंटा जैसे भी उनकी क्षमता है। उसके बाद छोटी छोटी आदतें जरूर अपने आप में अपना लें, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, लेटने का तरीका बहुत मैटर करता है। आप लेफ्ट साइड करवट लेके लेटते हैं तो आपका हार्ट बेटर वर्क करता है, जिससे
1: हमें
0: आपका
1: कहते हैं ना कि बाईं तरफ करवट लेके सोना चाहिए जी।
0: तो उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है,
1: जी
0: ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो ब्रेन आपका शांत रहता है,
1: जी
0: एक्टिव रहता है। इवन शाम के टाइम वह प्राणायाम करें और थोड़ा सा ध्यान कर लें।
1: कई बार ऐसा होता है कि कुछ हालात घर में ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा बहुत आने लग जाता है ना, और पता चला बच्चे आके कुछ कह रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य एकदम कम हो गया। इसके लिए भी क्या कोई योग के पास कुछ समाधान है?
0: योग के पास हर चीज का समाधान है,
1: जी
0: क्योंकि योगा तो आपके पैदा होने से लेके आखिरी दिन तक का आपको वो सिखाती है कि
1: जी
0: क्या कैसे करना है।
1: जी
0: तो जब आप योगा करने लगते हैं रेगुलर लाइफ में तो आपके अंदर एक एक धैर्य आता है, आपका मन एक शांति की तरफ बढ़ जाता है, तो आपको खुद गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से पे सबसे पहले आपका कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज आप मन शांत और खुश रहना सीख जाएंगे।
1: जी
0: तो जब योग करेंगे तो मन आपका शांत रहेगा और आप सामने वाले को भी शांत करना सीख जाएंगे।
1: तो क्या कहेंगी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनका एक जो दिनचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए?
0: उनका खान पान बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि वो बाहर का खाते हैं या कुछ भी ऐसा खाते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है तो उनका डाइजेशन खराब होगा।
1: यानी कि बाहर का कोशिश करें ना लें,
0: नहीं
1: घर का
0: खाएं।
1: बना हुआ सादा खाना
0: हाँ,
1: हो।
0: लेकिन हाँ, मन तो करता है सबका,
1: जी
0: क्योंकि मन तो उनका भी उतना ही चंचल है
1: तो
0: अभी।
1: थोड़ा सा ले ले,
0: थोड़ा सा ले ले,
1: थोड़ा सा खा ले।
0: थोड़ा सा खा ले,
1: अच्छा,
0: लेकिन समय और अपनी अवस्था को देखकर।
1: देखते
0: अब
1: हुए।
0: जैसे किसी को अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है
1: हाँ
0: तो मैं उसको नहीं कहूंगी कि वो बाहर से कुछ तला भुना खाए, क्योंकि उससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अपनी चीजों को देखते हुए कुछ ऐसा खाएं कि उनका मन अच्छा हो जाए।
1: घर में कुछ कभी मन करे तो हल्का सा कुछ
0: घर में अपने
1: बनवा
0: लिए कुछ
1: के कुछ
0: बनवा
1: खा
0: लें।
1: लें, क्योंकि घर का साफ सुथरा है, अपना शुद्ध जो खाना होता है भोजन।
0: घर में आपके हर

0: नियंत्रण है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: भोजन पे नियंत्रण रहेगा तो डाइजेशन ठीक रहेगा,
0: जी
1: और आपका मॉनिटर आपका डाइजेशन होता है,
0: हाँ,
1: इवन सबका ही डाइजेशन ठीक है तो आप 100 बीमारियों से दूर हैं,
0: और
1: मजबूती
0: इसके
1: फील कर
0: अलावा
1: पाएंगे।
0: क्या दिनचर्या होनी चाहिए? प्राणायाम बताया आपने,
1: प्राणायाम शाम के टाइम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा,
0: अच्छा,
1: क्योंकि उससे
0: और
1: नींद
0: सुबह?
1: अच्छी आएगी। सुबह तो 1 घंटे की योगा वो करें ही करें,
0: अच्छा
1: 1 घंटा
0: जी,
1: नहीं तो 45 मिनट, 45 मिनट नहीं तो आधा घंटा। कुछ वृद्ध हमारे ऐसे होते हैं जो ऑन बेड होते हैं,
0: जी
1: जिनकी
0: जी
1: इस लेवल की भी क्षमता नहीं होती कि वो उठ के कर पाए, खड़े हो पाए, तो वो बैठ तो एटलीस्ट सकते हैं। अपने
0: हाँ
1: आप को पुश कीजिए, अपना ब्रेन एक्टिव रखिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए।
0: जी,
1: तो उठने की कोशिश करें, बैठ के करने वाले बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, हैंड स्ट्रेचिंग्स कीजिए, शोल्डर रोटेशंस हो गई आपकी, शोल्डर ट्विस्टिंग हो गई, नेक ट्विस्टिंग हो गई, ये सारे आप करें, ध्यान करें, मंत्र उच्चारण करें, उससे बहुत शक्ति मिलती है।
0: बहुत अच्छी बातें देवी का बता रही हैं, क्योंकि अगर हम इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो अभी जाते जाते जो हमारी योग गुरु, योग प्रशिक्षिका हमारे साथ आई हैं, देविका श्रीवास्तव, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर। देविका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई योग के बारे में, परम सत्ता के बारे में, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद FM गोल्ड के स्टूडियो से जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।

उत्तरा केलकर की आवाज में ये गीत फिल्म थी घर घर की कहानी। और दोस्तों, कुछ लोग अपनी उपलब्धियों से इतिहास बनाते हैं और कुछ अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार जाते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत थी पद्मश्री सम्मानित पर्यावरण प्रेमी तुलसी गौड़ा जी। कभी स्कूल की शिक्षा न मिल पाने के बावजूद उन्होंने प्रकृति को अपना शिक्षक बना लिया। नंगे पांव जंगलों में वर्षों तक काम करते करते उन्हें पेड़ों और बीजों और औषधीय पौधों की ऐसी गहरी समझ हो गई कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी उनकी सलाह का सम्मान करते थे। इसी अद्भुत ज्ञान के कारण उन्हें दुनिया भर में फॉरेस्ट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना गया। अपने जीवन के लगभग 70 वर्षों में उन्होंने 30,000 से अधिक पेड़ों के रोपण और संरक्षण में योगदान दिया। वर्ष 2024 में 86 ईयर्स की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके लगाए हुए पेड़ आज भी उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनके प्रकृति प्रेम की कहानी सुना रहे हैं। तुलसी गौड़ा हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति की रक्षा के लिए बड़े पद या बड़ी डिग्री नहीं, बल्कि बड़ा दिल और सच्ची नीयत चाहिए। आइए हम भी अपने हिस्से का योगदान दें, एक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर रखें। क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तब प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है और हम आपका भी ख्याल रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिससे कि आप सब हमारे प्रोग्राम का, शो का हिस्सा बन सके। हम आपसे एक सवाल करेंगे जो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड। आपको ईमेल के जरिए इसका जवाब देना होगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आज से ही शुरू करते हैं। हमारा आज का सवाल है कि कौन है आपके घर का 6 AM हीरो, यानी कौन है जो 5 या 6 बजे उठकर अपने काम में लग जाते हैं या फिर उठ जाते हैं भले ही वो कुछ भी

स्नेह हो। सबसे पहले एक बात स्वीकार करनी होगी, सास माँ नहीं बन सकती, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती और अपनी एक सीमा होती है। लेकिन हर बहू की चाहत जरूर होती है कि उसकी सास समझने वाली हो, स्नेह देने वाली हो और साथ खड़ी रहने वाली हो। और हर सास भी यही चाहती है कि बहू उसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सम्मान दे। जब बहू घर में आए तो सास के मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि अब मेरे बेटे पर मेरा हक कम हो जाएगा, बल्कि ये सोच होनी चाहिए कि जिस बेटे को अब तक एक माँ का प्यार मिला, उसे अब जीवन साथी का साथ और स्नेह भी मिलेगा, उसका संसार और भी समृद्ध होगा। प्यार बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है, और रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं।

अभी हम सुन रहे थे जगजीत कौर को फिल्म शगुन से, और अब जो बात मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो मैंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी नानी दादी की रसोई से सीखी है। उन्होंने हमें सिखाया था कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि प्रकृति के सम्मान का भी है। उनके यहाँ जीरो वेस्ट कुकिंग कोई नया ट्रेंड नहीं था बल्कि जीवन जीने का तरीका था। आज हम अक्सर सब्जियों के सबसे पौष्टिक हिस्से को फेंक देते हैं जबकि वही हिस्से हमारे स्वास्थ्य के लिए खजाना साबित हो सकते हैं। जैसे धनिया के डंठल, इन्हें फेंकने की बजाय चटनी, सूप और करी में इस्तेमाल कीजिए। इनमें भरपूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मूली के पत्ते स्वादिष्ट पराठे, चटनी और सब्जी बनाने के काम में आते हैं। फूलगोभी के पत्तों से स्वादिष्ट सब्जी, दाल या पराठों की स्टफिंग तैयार की जा सकती है। इसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। और ब्रोकली के डंठल, इन्हें सूप या स्टर फ्राई में डालिए, ये भी उतने ही पौष्टिक है जितने इनके फूल। तो अगली बार जब आप सब्जियां काटें जरा रुककर सोचिए कि क्या जो हिस्सा फेंकने जा रहे हैं वो वास्तव में बेकार है, शायद नहीं। आइए समझदारी से खाएं, भोजन की बर्बादी कम करें, अपनी थाली में पोषण बढ़ाएं, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा

0: कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh

0: addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
0: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported

आपको ले चलेंगे 1960 के दशक की उस रंगीन दुनिया में जहां प्यार की खुशबू भारत से निकलकर जापान की गलियों तक पहुंच गई थी। आप सभी का स्वागत है हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1966 की सुपरहिट फिल्म लव इन टोक्यो की।

दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी लोकप्रिय अभिनेता जॉय मुखर्जी ने, जिन्होंने अशोक का किरदार निभाया था इस फिल्म में। वहीं फिल्म की नायिका बनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली आशा पारेख, जिन्होंने आशा का रोल इस फिल्म में निभाया था। उनकी अदाकारी और स्टाइल ने दर्शकों का दिल बहुत ही जीता था। फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाया मशहूर अभिनेता महमूद जी ने। इसके अलावा दमदार कलाकार थे प्राण, ललिता पवार और मदनपुरी। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और मधुर गीत।

परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

घटनाओं के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। साथियों, फिल्म में एक दिलचस्प मोड तब आता है जब आशा अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग भेष धारण करती हैं। कभी वह सिख युवक बनती हैं, तो कभी जापानी महिला। इन दृश्यों को जो देखता है उसे खूब हंसाया भी और इस फिल्म ने खूब रोमांचित भी किया है। लेकिन प्यार की राह आसान नहीं होती साथियों। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अशोक एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो जाता है।

सबसे बड़ी ताकत थी। हर गीत में रोमांस और मधुरता का अनोखा संगम दिखाई देता था। फिल्म के गीतों ने 1966 में लोकप्रियता के एक नया रिकॉर्ड बनाया और आज भी रेडियो पर उतने ही पसंद किए जाते हैं इस फिल्म के गीत। तो आइए एक बार फिर से सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जिगर का जख्म हरा है, देख विदा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा।

0: अजरे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लव इन टोक्यो बॉलीवुड की शुरुआती उन फिल्मों में से एक है जिसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर जापान में की गई थी। जो इस फिल्म की हीरोइन है यानी आशा पारेख ने फिल्म में जो दो मोतियों वाली हेयर एक्सेसरी पहनी हुई थी वह इतनी लोकप्रिय हुई दोस्तों भारत में कि लव इन टोक्यो कहा जाने लगा उसे। आज भी कई महिलाएं और लड़कियां इस नाम से ही उस हेयर बैंड को पहचानती हैं।

शानदार संगीत दिया और एक ऐसा नाम दिया जो आज भी लोगों की जुबान पर है। साथियों, अगर आपको यह फिल्म आपने अगर नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा।

दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।

करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रा निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने इवियों में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा स्टार्टअप्स, इख्तिराकार और असासाकार यकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रतिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,1400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खास तौर पर कबाइली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में

0: उपग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा

बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग

0: एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 20 सेकेंड। और ये समय है किस चीज का? जी हाँ, ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। और आज का ये जो सफर है, ये आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और अब हम करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज। तो आज जो कलाकार हमारे आज के हैं, उनके बारे में मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि वो बीते दौर के एक बेहद सफल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बेहद अच्छे संगीतकार रहे हैं। और उनकी संगीत रचना ने बहुत अलग अलग तरह की धुनों को हमारे बीच में लेकर आए हैं उनकी वो सारी धुनें। और कहते हैं कि उनकी उतनी शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन जो भी उन्होंने धुनें बना ली। सन 1929 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में। और इनका नाम आपको बता दूं, दत्ताराम वाडकर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार दत्ताराम की, जो मूलतः एक कुशल तबला वादक थे। संगीत के प्रति उनकी लगन ना उन्हें मुंबई ले आई, और आगे चलकर ना वो शंकर जयकिशन के साथ ही बहुत अलग अलग संगीतकारों के असिस्टेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने नौशाद, सी रामचंद्र, एस डी बर्मन, रोशन और इस तरह के अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। और लेकिन अभी जो मैं आपके लिए उनका पहला गाना लेकर आई हूँ, वो फिल्म का नाम है दिल्ली दूर नहीं। और आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना। और वैसे मुझे बता सकते हैं कि आप इनकी कौन कौन से गानों को पसंद करते हैं और आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं? तो आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गाना।

और अपने लगने लगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक फिल्म नशीली हवा, इस फिल्म का एक गाना जिसमें स्वर दिया है सुमन कल्याणपुर के साथ मन्ना डे ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को पहले।

मारते हैं। ये है, हाँ देखिए, ये है दत्ताराम वाडकर जी के बारे में जानकारी, और ये चमन हमारा अपना है। ये गीत बहुत लोकप्रिय है, हम लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना, शुक्रिया। ये कौन लिख रहे हैं? लिख रहे हैं चिरमिरी कुलारिया कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे, इनके साथ हमारे साथ और जुड़े हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बीकानेर से हैं रानी झांप और बिट्टू झांप, और आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने और जानकारी इन्हें रोचक लग रही है, शुक्रिया आपका इस बात के लिए। और ये है हमारे साथ वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ये हैं हर गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक ही कलाकार में हमारे साथ जुड़े हैं जी सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ग्राम पंजौनिया, ज़िला जालौन, उत्तर प्रदेश से। और देखिए हमारे साथ हैं स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और गांव लोहगढ़।

तो ये आपको दत्ता ठीका नजर आया आया होगा, क्योंकि ये अलग ही इसका ना एक देखिए जो एक कहते हैं कि अलग ही धुन थी, अलग ही लय थी, अलग ही ताल थी, और एक ऐसी ताल थी जिसमें इंसान अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाता। तो ये था उनका सिग्नेचर दत्ता ठेका, और हमने बात की है दत्ता राम जी की, और आज हम हमारे कार्यक्रम में बात उन्हीं की कर रहे हैं। तो हमारे दोस्तों की बात ही ना हो ऐसे कैसे होगा। संजय ढींगिया जी हमारे साथ हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। धर्मेंद्र चीपा जी ने वो सही जवाब मुझे दे दिया। जी हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था ना मीठी मीठी बातों से बचना जरा, उसमें बाल स्वर किसका है, वह है डेजी ईरानी का, और इसका उत्तर भी हमने आपको दे दिया था। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। फिर हैं फारूक अली खान, आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम गीत पसंद आ रहे हैं। ये हमें लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, एम एस अब्बासी और मुजफ्फर अली खान, शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे और भी दूसरे दोस्त जुड़े हैं, तो आप लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो की तरफ से भी सही जवाब आया है डेजी ईरानी का। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आदरणीय घोष जी, गुड आफ्टरनून, एक ही कलाकार में आज गीत और पेशकश एकदम सुपर, बधाई हो। अच्छा, ये हमें तुलसी मस्किन जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दत्ता राम जी की, और ये लिख रहे हैं संतोष कुमार सोनार, रथ चौक बहादुरपुर खानदेश से, और इन्हें कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो हमारी और इच्छा होती है आपके साथ और खूब सारी बातें करने की, लेकिन बातें अपनी जगह, गाने अपनी जगह, गानों के बिना बातें भी अच्छी नहीं लगती। तो आइए अब हम सुनाते हैं आपको एक ऐसी फिल्म का गाना जिसमें आपको लगेगा अरे इसमें तो दत्ता राम जी का संगीत नहीं है, इसमें तो सलील चौधरी है, फिर ये गाना हमें क्यों सुना रहे हैं। अरे दोस्तों,

जी हाँ, ये फिल्म है अजी बस शुक्रिया। और इस फिल्म में संगीतकार रोशन का संगीत था और इनके असिस्टेंट थे हमारे आज के कलाकार, जी हाँ कौन, तत्ताराम। और ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो हमने पूरी तरह समर्पित किया था हमारे आज के कलाकार तत्ताराम जी को। और आपने ये सफ़र तय किया आप मेरे साथ, यानी आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। और बस आपको इतना बता दें कि पुराने गीतों के प्रेमियों के लिए दत्ताराम वाडकर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। 6 जून 2007 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे बीच है। सच तो ये है कि कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनके सुर कभी विदा नहीं होते। तो बस कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और बस इस कार्यक्रम से अब मुझे दीजिए अनुमति, आपके साथ इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं मैथनी मेलोडी। तो बस बने रहिए

नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हो रहा है 3:00 बज गए हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो हमें उस सुनहरे दौर में ले जाता है जहां पर संगीत आज भी हमारे दिल को छूता है और हमारे जीवन में रस खोलता है। हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडी की और आज आपके साथ इस मैटनी मेलोडी में मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसे हमारे भाव के बारे में, एक ऐसी इमोशन के बारे में जिसने हमें हमेशा झकझोरा है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, पहले ये गाना सुनिए फिर मुझे बताइए।

जीवन में मिलने का सुख जितना मधुर होता है उससे कहीं अधिक गहरा होता है इंतजार। किसी की आहट का, किसी की आवाज का, किसी खत का, किसी मौसम का या फिर किसी ऐसे पल का जिसके आने की उम्मीद मन ने संजो रखी हो। तो बस इस महफिल को हम इंतजार के उन रंगों से रोशन करने वाले हैं जो कभी मुस्कान बन जाते हैं और कभी ऐसे गीत बनकर मन में उतर जाते हैं जो हमेशा हमारे दिल में बने रहते हैं। इंतजार की बिना दोस्तों अपनी एक खूबसूरती होती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं मगर मन अक्सर वहीं ठहर जाता है जहां से उम्मीद की शुरुआत हुई थी। शायद इसी वजह से कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा याद रह जाते हैं। देखिए ना, शायर ने क्या खूब कहा है, वो आए न आए ये मुकद्दर की बात है, वो आए न आए ये मुकद्दर की बात है, हम राह तकते रहें ये हमारी मोहब्बत है।

अरे आपके साथ का इंतजार है, क्योंकि आपका जो साथ होता है ना, ये एक अलग ही खुशी, एक अलग ही हौसला हमें देता है। तो बस बनी रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं इंतजार पर, और इंतजार के ना बहुत रूप होते हैं। ये इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का ही तो नहीं होता, कभी हम किसी चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं, कभी किसी खबर का, और कभी किसी ऐसे लम्हे का जो जीवन को फिर से मुस्कुराना सिखा दे, है ना। इंतज़ार की ना एक अलग ही कैफियत होती है, एक अलग ही तबीयत होती है, और इंतज़ार की अलग ही एक फिज़ा होती है। तो हम इंतज़ार करते हैं, और कभी कभी उसका भी जो हमारे जीवन में आना तो चाहता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नहीं आता।

फिर कब मिलोगी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई बरसों से, मगर अजीब है कि कान आज भी चौकन्ने रहते हैं। शायद उम्मीद का दूसरा नाम ही इंतजार है, और अब जब उम्मीद दिल में बसी हो तो रास्ते कभी सूने नहीं लगते, और बस जब उनकी याद आती है तो एक तड़प उठती है और दिल से बेसाख्ता एक ही आवाज़ निकलती है कि आजा तेरी याद आई।

फिल्म चरस में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के साथ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ, जो आपने सबसे पहला स्वर सुना था इस गीत में वो था आनंद बख्शी, गीतकार आनंद बख्शी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैथनी मेलोडी मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। आज हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की, और इंतज़ार में हमेशा एक अलग ही कशिश होती है, एक अलग ही खूबसूरती होती है। और कहते भी हैं कि कुछ शामें ऐसी होती हैं जब कोई दस्तक नहीं होती, फिर भी कान हर आहट पर ठहर जाते हैं। अजीब बात है, इंतज़ार का रिश्ता समय से कम और दिल से ज़्यादा होता है। और हर बार ना जो चीज़ मिल जाती है उसमें आनंद नहीं आता, कुछ चीज़ों की मिठास उनके इंतज़ार में ही छिपी होती है। शायद इसीलिए पहली बारिश, त्योहारों की सुबह, बच्चों के घर लौटने की आहट और अपने प्रिय लोगों से मिलने का सुख भी उतना ही अनमोल होता है ना। तो बस इंतज़ार का एक और रंग आपके साथ बांटते हैं, आइए सुनते हैं ये एक और गीत।

फिल्म इज्जत में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों बात कर रहे हैं इंतज़ार की। इंतज़ार की अलग ही एक फितरत होती है, एक अलग ही कशिश होती है। आपकी ईमेल्स का इंतज़ार भी हमें लगातार रहता है। देखिए हमारे साथ अलबक जुड़ गए हैं ना, हमारे साथ जुड़े हैं चित्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी। अम्बाला से हैं आशु खान और सोनाली खान। फिर हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि आज का हमारा कार्यक्रम है बेस्ड वेट पर, जी हाँ इंतज़ार पर। फिर हमारे साथ हैं आपको प्रेमपूर्वक आदाब गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आ चुके हैं अपने कार्यक्रम के एक ऐसे पड़ाव पर जिसे हम अंतिम बोलते हैं तो मन अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ हर चीज़ का एक मियाद होती है, हर चीज़ अपने वक्त पर ख़त्म होती है, तभी तो इंतज़ार ख़त्म होता है। तो इस कार्यक्रम का इंतज़ार भी अब हमारे यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक ऐसा गाना लेने आई हूँ, जब लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ दिल को चैन तभी मिलता है जब वो हमारे साथ होता है। कौन? जिसका हमें हमेशा इंतज़ार होता है। तो बस दिल को दीजिए चैन और मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफ़र सुनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा उर्दू कार्यक्रम उर्दू मजलिस, और उसके बाद का वक्त होगा युवाओं के कार्यक्रम युववाणी का। तो बस इंतज़ार आपके लिए लगातार रहेगा यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का, और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। और बस आइए, अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सारा इन गज़ल एक छोटा सा लफ्ज़ लेकिन अपने अंदर हज़ारों रंगीनियाँ समेटे हुए। गज़ल वो सिनफ़े सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है और हमें अपने इर्द गिर्द कौसे कज़ा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं, और रूह को सकून देने वाली सिनफ़ है ये, जहाँ जहन और दिल को शादमानी अता करती है वहीं एहसासात का खूबसूरत इजहार भी है। मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर।

अभी आप पंकज उदास की आवाज में यह गजल सुन रहे थे। कलाम था निदा फाजली का। सामईन, शायर ने दुनिया में हर जगह लोगों के बदलते हुए शऊर और एहसास का साथ दिया है, ताकि वो जहनी जिंदगी से बेताल्लुक ना हो जाएं। जिंदगी की तरह शेर हरकत और नमो में रचा बसा हो। मेरी आंखों में बसा है यूं तसव्वुर तेरा, मेरी आंखों में बसा है यूं तसव्वुर तेरा, बर्फ कश्मीर की वादी में जमी हो जैसे।

0: 人心。
1: 印度地理广播电台听众朋友们，今天我们播送布拉哲语民间歌曲，请各位欣赏。
0: 古道播讲。

인도텔리 광보 电台 听众朋友们 请收听 짝지친구 和지철아 신구 唱的歌曲

0: 印度德里广播天台听众朋友们，请收听扎吉情歌唱的歌曲。
1: आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है न समंदर निगल सका इसको न तवारीख तोड़ पाई है वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का

印度的里广播电台，听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·约翰唱的歌曲，请各位欣赏。

印度代理广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister

0: The Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, the financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready, all are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं.
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: Yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: Yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: Yeah. है ना. And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it.

0: Today they'll be, it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the labour and employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meagre amount, some may get very meagre amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So in fact the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
1: translate
0: kiya, yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know. And it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today. Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार तालियां हो जाए.
2: देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं.

0: हाथ में क्या क्या दिया उन्होंने, मालिकाना हक दिया, उनके हाथ में पैसा दिया, उन्हें जो धुएं और धूल में खाना बनाने के लिए बाध्य होती थी उन्हें स्वच्छता वाली गैस दिया ताकि वो खाना बना सकें, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए ध्यान दिया, यानी बच्ची से लेके बुजुर्ग महिला तक। अब आप समझिए कि मनरेगा में काम करने वाली महिला के हाथ में अगर 500 रुपये या 300 रुपये या 800 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आता है, इसको स्टेट वेरी करता है, इसलिए मैंने ये अलग अलग मजदूरी का मेहनताना बताया, तो जो पैसा उसके खाते में आता है तो वो सशक्त और मजबूत होती है और ये घर के किसी भी काम में फैसला लेने या निर्णय लेने में उसकी सहभागिता, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। परिवार में सिर्फ पुरुषों की नहीं चलती, उसे अब हाथ पसार कर किसी, हाथ आगे बढ़ाकर किसी से पैसे मांगने की नहीं जरूरत पड़ती, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका बेटा हो, किसी भी उम्र में हो। तो ये जो महिलाओं के को हक दिया प्रधानमंत्री ने, उसका घर कहा कि 75% से अधिक ऐसे आवास हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका मालिकाना हक या तो महिलाओं को मिला हुआ है या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों के नाम मालिकाना हक है। तो प्रधानमंत्री का ये काम और इस सरकार का की जो सोच है, ये सिर्फ मकान देना नहीं था, लोगों को सशक्त और मजबूत बनाना था ताकि वो सोचे कि कैसे हम बेहतर जीवन वो कैसे जी सकते हैं।
1: सिंह साहब, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, लेकिन अब आवास के बाद बात आती है गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन की, जिससे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो शौचालय बनाना एक बात है और उसका नियमित इस्तेमाल आदत में लाना दूसरी बात है। पिछले एक दशक में ग्रामीणों की मानसिकता को बदलने में आपको क्या लगता है कौन सी रणनीति सबसे कारगर रही है?
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया जो शायद इतिहास कभी नहीं उन्हें भूलेगा। महात्मा गांधी ने पहला भाषण दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और जब वहां से निकल के आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस देश में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आजादी। तो उन्होंने कहा लेकिन आप आजादी के बजाय स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भाषण भी आपका ज्यादा होता है, तीन दोनों में प्राथमिकता किसको देंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी होगी तो हम स्वच्छता को देंगे। स्वच्छता के लिए बहुत काम किया गांधी जी ने, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो चाहत रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के साथ ही 2 अक्टूबर 2014 को जब अनाउंस करते हैं महात्मा गांधी की 145वीं जयंती,

0: भी होती है, उस समय उन्होंने कहा कि इस देश में स्वच्छता पहली प्राथमिकता होगी। और हर सब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि एक प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा, सफाई की बात कर रहा, झाड़ू की बात कर रहा, प्रधानमंत्री को तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात की है जो शायद आम आदमी ही नहीं अब दुनिया के खास आदमी भी इसको महत्वपूर्ण मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी ने वो सोचा जो शायद ही दुनिया का कोई और प्रधानमंत्री के स्तर पर पहुंचा हुआ सामाजिक आंदोलन एक छेड़ा इस देश में जो इतना जरूरी था, जिसके मायने बहुत हैं। आप देखो, देश की गरीबी के लिए, देश के आर्थिक उन्नति के लिए, देश के सशक्त होने के लिए, देश के सोचिए महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी। महिलाओं को जो गौरव प्रदान किया प्रधानमंत्री ने, आप बात कर रहे थे मालिकाना हक आवास का, मैं कहता हूं उससे बड़ी बात थी शौचालय की। महिलाएं शौच करने कहां जाती रही होगी, जरा सोच के देखिए आप, रूह कांप जाएगी। उन महिलाओं से पूछिए जो बुजुर्ग हो गई हैं, 50-60-70 साल की हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं कि अपने घर में भी शौचालय हो सकता है, अपना शौचालय हो सकता है, बंद कमरे में भी शौचालय का उपयोग करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये करके दिखा दिया कि इस देश में महज 5 साल में 2 अक्टूबर 2019 को उन्होंने कहा कि गांव के 10 करोड़ घरों में शौचालय बनकर तैयार हो गए। और ये मान के चला गया कि यह एक अभियान की तरह था। उन्होंने कहा नहीं, इस मिशन मोड में करना है, देश के हर घर तक पहुंचा देना है। जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार पैसे देगी और आपको पैसे देगी, आप चाहो तो और भी बेहतर बना सकते हो। बेसिक जितनी जरूरतें होती है सरकार ने अपनी ओर से किया, और जिनके पास और पैसे थे उसे और भी अच्छा से। लेकिन उससे बड़ी बात थी जब उसका दूसरा चरण शुरू किया प्रधानमंत्री ने और ये अभियान छेड़ा कि सिर्फ शौचालय बनाने से बात नहीं बनेगी, शौचालय का 100% उपयोग करना जरूरी है।
1: तो ये जो दूसरा चरण है जो आप बता रहे हैं वो कब शुरू हुआ और
0: ये 2019 में शुरू किया, 2020 में कह सकते हैं आप, 2020 से 2025 का यह पूरा फेज था। इस फेज में यह था कि कहा गया ODF प्लस। ODF प्लस का मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में कोई भी शौच करने जाए ही नहीं। देश का एक भी व्यक्ति अगर खुले में शौच करता है तो यह मेरा अभियान सफल नहीं होता है। प्रधानमंत्री की यह बात लोगों तक पहुंची और लोगों के आदत में जो होती है ना प्रवृत्ति, आदत होती है, मतलब हैबिट में डाल दिया, आदत में डाल दिया। कोई भी आदमी आज गाड़ी में चलते हुए कोई भी कचरा बाहर फेंकने में 5 बार सोचता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और अगर आपके गाड़ी में कोई बच्चा बैठा है तो आपको खुद ही रोक देता है कि नहीं बाहर मत फेंकिए। तो ये जो दिमाग में आ गई बात, और जब यह स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, तो 2020 से लेकर 2024-25 तक जब इन्होंने कहा कि ODF प्लस किया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाए, हर आदमी उसका उपयोग करे, इसके अलावा जितना सफाई से कूड़ा और कचरा निकलता है, कचरे कितने तरह के कचरे निकलते हैं, कैसे उसको प्रोसेसिंग कैसे हो, कैसे कचरे को खत्म किया जाए, क्योंकि वेस्टेज को अगर आप सही ठिकाने पर नहीं लगाते हैं तो उसका बड़े गलत इम्पैक्ट होता है।
1: और ODF प्लस में ज्यादा जोर अपशिष्ट प्रबंधन पर भी रहा है, जिसे 3R, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज पर, जिसे हम कह सकते हैं।
0: मैं यही कह रहा हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दिया गया। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए या इसे खत्म किया जाए या रिसाइकलिंग को बढ़ा दिया जाए, कहीं बाहर प्लास्टिक न दिखाई दे, कहीं ऐसा सूखा कचरा और गीला कचरा का आपने देखा होगा हर जगह, आपने शहर में से लेके गांव देहात तक देखा होगा कि हर जगह डिब्बे लगे होते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कचरा जो तुरंत सड़ सकता है, जो जैविक खाद के रूप में उपयोग हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और हमारी फसलों के लिए काम आएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है उसका उपयोग भी कहीं हो सकता है, वो हमें ईंट और पत्थर बनाने के काम में आ जाता है, ईंट बनाते हैं ना, ब्रिक बना करके मकान बनाते हैं, वो कचरे के रूप में उपयोग होता है। हमारे देखिए ना, दिल्ली के आसपास अगर आप बाहर के क्षेत्रों में जाएं तो कचरे का पहाड़ दिखता है। अब इस कचरे के पहाड़ को एक दिन में तो नहीं बना होगा, एक लंबा समय लगा होगा इस पहाड़ को बनाने में, बनने में कचरा डालते गए, लेकिन वो खत्म कैसे होगा इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन इस सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए और कहा कि सफाई के साथ साथ कैसे स्मार्ट सिटी को कैसे कचरा निकाला जाएगा, उसका कैसे निपटान किया जाएगा, कैसे उसका विभाजित किया जाएगा और उसके निपटान के वैज्ञानिक तरीके बताए गए। और हमें लगता है देश के करीब करीब 1 दर्जन ऐसे शहर हैं जहां पे आप कह सकते हो कि वहां पर कचरा मुक्त शहर है, वहां पे कोई कचरा बाहर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। भला वहां का कचरा कहां चला गया? क्योंकि उसकी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग होती है,
1: उसको रीयूज किया गया।
0: जी, वो वेस्टेज जो है आज वो वेस्ट द बेस्ट हो गया है, वो इतनी बढ़िया चीज बनने लगी, उससे पैसे मिलने लगे, रोजगार में होने लगा लोग, और उससे सरकारें वहां की जो स्थानीय निकाय हैं उससे वो पैसा कमा रहे हैं, और लोग जो वहां काम करते हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जो उसकी सफाई करते हैं, शहर साफ, लोगों को रोजगार, और वो शहर पूरे देश में माना जाता है कि सबसे सुंदर और

0: सबसे साफ शहर है, जिनमें हम दो चार शहरों के नाम भी ले सकते हैं। हमें लगता है पिछले पांच चार साल से इंदौर का नाम आ रहा है, भुवनेश्वर का नाम आ रहा है, आपका नवी मुंबई का नाम आ रहा है, और नई दिल्ली का एक पार्ट भी आता है उसमें आ रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली अभी इसमें शुमार नहीं हो पाई है। जी
1: वैसे सिंह साहब, स्वच्छता का जो संबंध है सीधा, वो हमारी सेहत से भी है। इस पूरे अभियान ने ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य और उनके जेब के खर्चों को किस तरह से प्रभावित किया है?
0: देखिए, गंदगी और गंदा पानी
1: जी,
0: दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। कुपोषण बीमारी की जड़ है, ये गरीबी की जड़ है। ये अगर कोई घर में बीमार है तो हमें लगता है बीमारी से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और 80% बीमारियां गंदगी और गंदे पानी से होती है। तो अगर ये दो चीजों पर ध्यान दे दें तो प्रधानमंत्री का ध्यान सबसे ज्यादा इस पर है, पेयजल पर, जो नल से जल पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाने की
1: एक जल जीवन मिशन
0: के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाना, यानी स्वच्छ और शुद्ध पानी पहुंचाना पहला उद्देश्य है। दूसरा है हर घर, हर गांव, हर शहर साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर जल जनित बीमारियां बढ़ती हैं, खासतौर से इस देश में देखा होगा बारिश का मौसम आता है, तो जो गंदगी बाहर होती है वो बाहर सड़ रही होती है, और आपके हाथ पांव से या जूते के रास्ते या किसी के रास्ते आपके घर तक अगर वो पहुंच गई तो बीमारी घर तक पहुंच जाती है। पहली जो बीमारी के फैलने को रोकने के लिए यही हाल है कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, पेचिस, खुले में शौच से कच, इतनी तरह की बीमारियां हैं जल जनित बीमारियां, और ये सब गंदगी से होती हैं, गंदा पानी से कह लीजिए या कचरा से होती है या डेफिकेशन से होती है। जो डेफिकेट, जो आप मल त्यागते हैं लोग, अगर बाहर मल रहेगा और बारिश होगी तो वो बह के कहीं ना कहीं किनारे लगेगा, कहीं ना कहीं हाथ पांव से होकर आपके घर तक, आपके रास्ते तक, मतलब लोगों के तक पहुंचेगा, और अगर ये पहुंचेगा तो इतनी तरह के रोग होते हैं। अब भला क्यों नहीं हैजा होता है इस देश में, प्लेग नहीं होता है इस देश में? इसलिए नहीं होता क्योंकि सफाई पर अब ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, और शुद्ध पानी घर तक पहुंचाने के लिए यह सरकार प्रयास कर रही है, और जहां जहां जल भराव होते थे गांवों में, क्षेत्रों में, उनकी सफाई कैसे हो और उसको कैसे भरा जाए, और कैसे उसको, जो जल भराव वाले एरिया थे, जोहड़ जिसको कहते हैं, पानी जिसमें सड़ जाया करता था, उसको पुनरुद्धार करके उसको एक तालाब बना दिया जाए ताकि उसमें पानी रुके और उसका व्यावसायिक उपयोग हो सके। उसमें मछली पालन हो सकता है, उसमें बत्तख पालन हो सकता है, कुछ भी, किसी भी तरह का उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस सरकार ने लोगों की नब्ज को पकड़ा और वहां की जो मुश्किलात थी बेसिक लेवल पे, जमीनी लेवल पे, उसको समझा, उसके अध्ययन को, और ऐसा नहीं, इस देश में ढेर सारे रिसर्च, ढेर सारे अध्ययन सरकार तक पहुंचाए जाते रहे हैं, लेकिन उस पर काम कितना हुआ, लेकिन इस सरकार ने बहुत गंभीरता से उस पर ध्यान दिया, और उसका नतीजा है कि आज हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। और यह सब तब हो पा रहा है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्योंकि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको पानी की टंकी बनानी पड़ेगी जहां पर पानी स्टोरेज होगा, पानी की सफाई होगी, लोगों तक पानी पहुंचेगा। दूसरा है कि कचरा जो होता है उसका प्रबंधन कैसे हो, वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को मालूम है कि गांव का कचरा कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि गांव में का कचरा जो होता है मैक्सिमम कचरा जैविक होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसको सड़ाने का सिर्फ पानी और मिट्टी डाल के उसको ढक दिया जाए तो अपने आप खाद तैयार हो जाता है और जैविक खाद के रूप में बहुत बेहतर उपज देता है। तो किसान इस बात को जानता है, सिर्फ उसे जागरूक करने की जरूरत थी ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में इसकी जो वैज्ञानिक तरीके से सफाई हो रही है या कचरा सफाई हो रही है या कचरे का निपटान हो रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बड़ी समस्या थी इस देश की, उससे हम मुक्त होंगे।
1: तो सिंह साहब, सरकार ने वर्ष 2047 तक, यानी जो देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। तो अंत में मैं चलते चलते आपसे बस यही पूछूंगा कि पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण आवास और ये स्वच्छता के क्षेत्र में जो ये हमारी बुनियादी नींव रखी गई है, वह 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है? आपके विजन में 2047 का हमारा आत्मनिर्भर और सशक्त गांव कैसा दिखाई देता है?
0: 2047 तक आते आते यह देश, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ कि जो आधार प्रधानमंत्री या इस सरकार ने रखा है, इस आधार पर 2047 का विकसित भारत बुलंद होगा, बेहतर होगा, स्वस्थ होगा, और जो आज की पीढ़ी है, जो 47 तक जाकर जवान होगी, वो पीढ़ी कम से कम इस बात को भूल जाएगी, उसे इतिहास लगेगा कि लोग बाहर भी शौच करने जाया करते थे, क्योंकि दुनिया के विकसित देशों में के जो युवा हैं वो जानता ही नहीं कि बाहर भी लोग शौच करने जाते होंगे। तो हमारे देश का युवा भी

0: इतिहास में कभी पढ़ेगा कि हमारे देश में भी लोग बाहर शौच करने जाया करते थे।
1: तो सिंह साहब, आज आपने बहुत ही सरल, व्यावहारिक और स्पष्ट तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया कि कैसे पिछले 12 वर्षों में देश का ग्रामीण परिदृश्य बदला है, और जब नीतियां सशक्त होती हैं, नीयत साफ होती है, तो गांवों का आत्मविश्वास अपने आप जाग उठता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण बातचीत। विषय था वर्तमान सरकार के 12 साल बेमिसाल पक्के मकान और संपूर्ण स्वच्छता। जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे तुषार पराशर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: तो इस बेहतरीन संदेश के साथ ही आज का कार्यक्रम ग्राम संसार हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, राम।
4: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया।

0: किया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:05 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: विनस बहन, देखिए, अगर हम मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, और इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की बहुत सारी ऐसी समाचार हम सुनते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लू लगना भी कहते हैं। ये बहुत ही घातक हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गर्मी के मौसम में धूप में कम से कम निकलें, और अगर निकलते हैं तो पानी साथ रखें और अपने सिर को सूती कपड़े से कवर करें। इसके साथ साथ कपड़े भी ढीले ढाले पहने, सूती कपड़े पहने जिसमें से हवा आर पार जा सके। और खान पान का तो हमें इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की जो हम बात कर रहे हैं वो उसी दौरान आता है जब हम धूप में अधिक होते हैं या हमारी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इसमें चक्कर आना, उल्टी आना, कई बार तो बेहोशी जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं।
1: बिल्कुल, हीट स्ट्रोक वैसे तो ये शब्द से बहुत सारे लोग परिचित हैं, पर क्योंकि जो आधुनिक लोग हैं मतलब ज़्यादा अलग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन जो हमारे देसी भाषा में बोले तो लू है। तो जैसी गर्मी आती है तो लू, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे शरीर का तापमान हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका बॉडी का जो जो लिक्विड है वो निकल जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको चक्कर आता है।

0: बुखार, ये कई तरीके की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है, और ये समस्या ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जितने भी घर के बुजुर्ग और बच्चे तो धूप में या मतलब दोपहर की जो बहुत तेज 12-1 बजे के बाद होती है उसमें वो कम निकलें, और वो जब निकलते हैं तो कुछ ठंडा पानी पी करके या कुछ अपना लिक्विड फॉर्म लेके अपने अपने पूरी तैयारी के साथ में या कुछ कपड़ा सर पे रख के ढक कर ऐसे जाएं अगर बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो जितना हो सके लू से बचें, घर में रहें और आप सावधानियों का से बरतेंगे तो आप इससे बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ताज़ी सब्जी और फलों को अपने खानपान में शामिल कीजिए, क्योंकि सब्जियों में और फलों में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को डिहाइड्रेट भी करता है। तो ये तो बात रही हमारे स्वास्थ्य की, और अब करवाते हैं अपने श्रोताओं का मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हम मौसम के अनुसार अच्छे अच्छे फल सब्जियां और अनाज का सेवन कर पाते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हम अन्न उगा रहे हैं उसका भंडारण भी सही तरीके से हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक बातचीत हम आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है CWC द्वारा स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम। इसमें बातचीत कर रहे हैं AM राव, और इनसे बातचीत कर रही है मंजीत कौर।
1: में मौजूद हैं AM राव, जो कि ग्रुप जनरल मैनेजर हैं MIS, जो कि आज स्मार्ट वेयर हाउस का जो प्रोग्राम यहाँ पर भारत मंडपम में करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: एक तो मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम में आए और उन्होंने इसका कवरेज किया है, और ये भारत भर में और विश्व भर में सबसे बड़ा स्मार्ट वेयर हाउसिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। और जैसे आपको पता है कि हमारा जो फूड ग्रेन और फूड सिक्योरिटी जो सिस्टम है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए पहले भी कई कदम लिए गए थे, IT में इंटरवेंशंस हुए थे, और अभी जो लेटेस्ट IT इंटरवेंशन हुआ उसमें डिपो दर्पण, जिसमें पूरी पारदर्शिता डिपो ऑपरेशंस में, स्टोरेज में, हैंडलिंग में आती है, और उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब स्मार्ट वेयर हाउसिंग का जो हमने प्रोजेक्ट किया है, जिसके अंदर AI और IoT सेंसर्स लगा के हमने इस सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास किया है, और ये भारत भर में 215 जगह CWC ने इम्प्लीमेंट किया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है।
1: बिल्कुल सर, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि CWC और FCI द्वारा ये आयोजन हुआ है, तो जैसे कि अनाज का भंडारण वगैरह होगा, तो उससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस टेक्नोलॉजी से?
2: जैसे कि आपको पता है कि जो स्टोरेज में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वेयरहाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका, तो उससे जो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती है। दूसरा होता है एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। तो दोनों पैरामीटर्स के लिए CWC और FCI ने अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैंडर्डाइज 90 पैरामीटर्स बनाया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसमें वेयरहाउस मैनेजर उसको असेस करता है और रीजनल ऑफिस उसको वेरीफाई करता है उन 90 पैरामीटर को। प्लस ऑपरेशनल एफिशिएंसी के भी 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है, स्टोरेज लॉसेस कितने हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, और आपका जो डेटर्स है, जो अमाउंट आप कस्टमर से जो आना चाहिए वो कितने दिनों में आ रहा है। तो इस प्रकार के 5 क्रिटिकल पैरामीटर से किसी वेयरहाउस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज किया जाता है।

0: और इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर से उसको जज किया जाता है कि उस वो कितना अच्छा रख रखाव है उसमें। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बना के एक स्टार वेयरहाउसिंग हम लोग बनाते हैं। कई वेयरहाउसेस जो है 3, 4, 5 वेयर कैटेगरी में है। तो डिपार्टमेंट का ये टारगेट है कि जितने भी वेयरहाउसेस है वो आने वाले सालों में 4 से 5 कैटेगरी में सब आ जाए। तो अगर 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, और इसका रिजल्ट्स ये होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और आपका जो टर्नओवर है वो कई गुना बढ़ जाएगा इससे। और हमने पिछले सालों में देखा भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बड़ी है CWC की, 30% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, टर्नओवर भी 30% के आसपास बढ़ा है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और भी कई पैरामीटर है, पारदर्शिता लाना, डिजिटाइजेशन होना, मैन पावर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता, मतलब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो सबसे केंद्र बिंदु है इसका कि कस्टमर को सेटिस्फाई हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है इन इनिशिएटिव्स का।
1: और कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस स्मार्ट वेयरहाउस सिस्टम का?
0: ये अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आने वाले सालों में हमें इसका पूरा की पूरा लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, हमारे डिपॉजिटर्स को लाभ मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारा जो टर्नओवर और प्रॉफिट है वो लगभग 30% बढ़ा हुआ है। तो जब स्मार्ट वेयरहाउसिंग फुली ऑपरेशनल में आ जाएगा तो आप देखिए इसका कितना बढ़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में हम इसका आकलन करेंगे और आपको डेफिनेटली बताएंगे इसके बारे में।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: संदेश ये है कि क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने वेयरहाउसेस है या पब्लिक वेयरहाउसेस है या प्राइवेट वेयरहाउसेस भी है, वो भी इन तकनीकों को यूज़ करें, डिपो दर्पण को यूज़ करें, स्मार्ट वेयरहाउसिंग की तकनीक को यूज़ करें, और तो ही देश में बट विदेश में भी, जैसे कई विदेश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई और भी कई कंट्रीज़ हैं जहां पर फूड ग्रेन का मैनेजमेंट होता है, वहां पर भी अगर CWC अपना इम्प्लीमेंटेशन करे तो दुनिया भर के लोगों को जो पुअर है, नीडी है, उनको इसका लाभ मिले।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, और विषय था CWC द्वारा स्मार्ट वेयरहाउस सिस्टम, और इसकी जानकारी दे रहे थे श्री AM राव, ग्रुप मैनेजर MISC। मंजीत कौर इनसे बातचीत कर रही थी।
3: और देखिए, वेयरहाउस केंद्रीय भंडारण निगम का ये मुख्य कार्य है कि कृषि उत्पादों को, उर्वरकों को और अन्य वस्तुओं को वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करें, जिससे कि जो भंडारित किया गया जो सामान है उसका अच्छी तरह से रख रखाव हो सके और उचित समय पे उसकी बिक्री से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सके। इसलिए वेयर हाउस के कामकाज का उचित ब्यौरा रखा जाता है, जिससे कि वेयर हाउस का उचित लाभ सबको मिल सके। और अब आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पहले ये संदेश।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगने करने पर जोर दिया जाता है। और अगर कृषि की बात करें तो सिंचाई का जो काम है उसके बिना कृषि में उचित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि जल की जो मात्रा है उसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो व्यर्थ भी ना हो और अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुँचे, फसलों तक पानी पहुँचे और अच्छा उत्पाद हमारे किसान भाइयों को मिल सके। इसलिए जल संरक्षण के लिए सरकार निरंतर योजनाएं बनाती रहती है। ऐसी एक योजना है अटल भूजल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, वर्षा जल का संरक्षण किया जाए और सिंचाई के भी, जैसे कि हम कहते हैं टपक सिंचाई विधि या फव्वारा विधि, इस तरह की विधियों का हम इस्तेमाल करें जिससे कि पानी कम इस्तेमाल हो और हमारी पैदावार भी अच्छी हो और पानी व्यर्थ में ना बहे। तो जल का सही

के संरक्षण और प्रबंधन ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और हमारे अगले कलाकार भी अपने गीत के माध्यम से इसी बात को बता रहे हैं। तो सुनते हैं जल संरक्षण पर आधारित ये रागनी और हमारे जो कलाकार हैं वो हैं योगेंद्र निमचाना।

0: तो भाइयों अभी आप सुन रहे थे रागनी, कलाकार थे योगेंद्र नेपचाना।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: और आपको याद दिला दें कि वही कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदार कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फरमाइशी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और हमें अपनी फरमाइशों के बारे में बताते हैं। अधिक से अधिक श्रोता हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इससे हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने का समय और फ़ोन नंबर सभी जानकारियां आपको विस्तार से दी जाएंगी। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम, राम। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का। अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। गजल और कव्वाली दोनों ही वो एक सिफ्त है, एक वो तरीका है कि जहाँ आप इंसान के इमोशंस को, उसके एहसासात को बहुत अलग तरीके से बयान करते हैं। गजल के जरिए खूबसूरती और इश्क को बयान किया जाता है, वहीं कव्वाली वो सिफ्त है जिसमें आप रूहानियत को पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक रूहानियत से।

इबादत के लिए किसी जगह जाकर इबादत करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में वो मसरूफ़ बहुत होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, या किसी ऐसी परेशानी में होता है कि वहाँ वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। उस वक्त उसकी नज़रें, उसका दिल, उसके जज्बात, उसके एहसास उस ईश्वर की बारगाह में झुक जाते हैं। वो सबसे बड़ी इबादत है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने कार्यक्रम गजल और कव्वाली सुना। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और 8:30 पर आप सुनेंगे गीत मालिका। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। कृपया प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। कहा यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायत दर्ज और न्याय दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जनकल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। दिल्ली पुलिस ने बताया ऑपरेशन साई हॉक के 5वें चरण के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज उत्तरी जिले के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने और एक सुरक्षित तथा सुलभ पुलिसिंग माहौल देने के लिए स्थापित किया गया है। उद्घाटन के बाद श्री संधू ने कहा कि यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण देगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों जैसे कि पिंक बूथ और सशक्ति अभियान की भी समीक्षा की। श्री संधू ने पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और भी थाना स्थापित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर गुड गवर्नेंस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि AI शासन व्यवस्था को केवल प्लेटफॉर्म आधारित से बदलकर इंटेलिजेंस आधारित बनाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि AI प्रणालियों से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता को प्रतिबंधित करे। उपराज्यपाल ने देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता तथा जन विश्वास आधारित संप्रभु AI क्षमताएं विकसित करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताई। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान लोग राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जल कनेक्शन, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। शिविर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दर्शाती है कि शहरवासी घर के निकट उपलब्ध हो रही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र नागरिकों तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। ऋषु की रिपोर्ट के साथ।

0: प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
1: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्माण एजेंसियों को नवंबर से पहले पर्याप्त तैयारी का समय उपलब्ध कराना है, ताकि दिल्ली वासियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये व्यवस्था सामान्यतः हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ लागू रहेगी। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कई प्रावधान हैं, जिसमें वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा। खुले में कचरा जलाने पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी, जैसे प्रावधान शामिल हैं। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस वर्ष राजधानी क्षेत्र में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएगी। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में उम्मीद फाउंडेशन की टीम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस संस्थान की विशेषता है कि इसके अधिकतर स्वयंसेवक युवा हैं, जिनकी पर्यावरण को लेकर समर्पण तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में कई गैर सरकारी संगठन, निवासी कल्याण संघ, संस्थानों, कॉलेजों, विद्यालयों और युवाओं को एक साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरा भरा बनाने के संकल्प में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्षा से अमीशा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया संलयन और रणनीतिक संचालन के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू हुआ है। इस दौरान 715 छापेमारी टीमों ने दिल्ली सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समन्वित अभियान चलाए।
4: तो ना सिर्फ हमने हॉटस्पॉट्स पर काम किया, बल्कि उन आम कंप्लेंट्स पर भी काम किया और उनके एनालिसिस करके हमें लगा कि बहुत सारा जो फ्रॉड है, हालांकि उसमें अमाउंट में एफआईआर बहुतों में नहीं थी और अमाउंट चूंकि 1 लाख से कम था तो ईएफआईआर भी नहीं थी, तो उसके अंदर जब काम करने से पता लगा कि एपी के बेस्ड फाइल्स का बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आना होता है और उसी की वजह से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है। इसी की मदद से हम लोगों की जो संख्या रही इस बार अरेस्ट की, वो पिछले सभी साई हॉक ऑपरेशन से ज्यादा रही और 916 के अलावा अभी भी फॉरवर्ड लिंकेजेस में हमें उम्मीद है कि हम और लोगों को भी पकड़ पाएंगे।
1: श्री गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 105 लैपटॉप, 757 मोबाइल फोन, एक कार और लगभग 21 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में नाइजीरिया के 2 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि मामले में 4 आरोपी राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी युवाओं, खासकर छात्रों को वर्क फ्रॉम होम का प्रलोभन देकर भर्ती करते थे। मामले की जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाया जाए। नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के बारे में श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में सहायता की है।
5: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
6: प्रत्येक ऑटो

0: शिक्षा पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर द्वारा फॉगिंग अभियान का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ये ऑटो सभी 250 वार्डों में जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि ये ऑटो रिक्शा फॉगिंग मशीन और जन जागरूकता सामग्री जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले संदेश, पैम्फलेट और बैनर प्रसारित करेगी। महापौर ने कहा कि इस रैली का आदर्श वाक्य जीतेगी दिल्ली, हारेगा डेंगू मलेरिया महज एक नारा ना होकर निगम की प्रतिबद्धता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली भाजपा ने राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन घर घर महाजन संपर्क अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के सभी 256 मंडलों में किया गया। इस महाजन संपर्क अभियान में मुख्य रूप से सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विश्वास तथा जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुरी बी मंडल में घर घर जाकर क्षेत्रवासियों से संपर्क किया। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत ने हरिनगर विधानसभा में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकुलपुर विधानसभा में क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लगातार प्रोत्साहन देशभर के छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति का एक पोस्ट साझा करते हुए श्री सूद ने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस संकल्प में दिल्ली विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने बताया कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर पोर्टेबल शौचालय स्थापित किए हैं। परिषद ने कहा कि इनका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। वहीं नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि योग को ऑटोइम्यून बीमारियों और रूमटॉइड ऑर्थराइटिस के प्रबंधन में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हुई। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपियन भवानी देवी इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में दोपहर में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा की

संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी
2: संचित जैन।
1: मैं और संचित आपको लेकर चलेंगे आज खेल जगत के सुनहरे सफर पे, जहां हम आपको अलग अलग खेल गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। और आज जिन खेल गतिविधियों को हम शामिल करने वाले हैं उसमें है हमारे पास सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का चल रहा है, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे हॉकी के फील्ड में, उसके बाद हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ पर शूटिंग खबरों से। दोहा की डायमंड लीग में भी हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं कमबैक कर रहे हैं, आज उनका देर रात मुकाबला है। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी हमारे जो बॉक्सर्स हैं उन्होंने पंच लगाए हैं जो कि हमें मेडल की तरफ लेके जाएंगे। तलवारबाजी में भी हमारे खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। तो संचित, तैयार हो इस पूरे ही प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए?
2: जी बिल्कुल कविता जी, खबरें बहुत सारी हैं, टाइम कम है, तो आइए शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं फीफा के फुटबॉल के उन ग्राउंड्स में जहां पर लगातार टीमें अभी अपना अपना प्लेस बनाने के लिए लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं संचित के पास।
3: अर्जेंटीना

स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को फुटबॉल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4-1 से हरा दिया। सब्स्टिट्यूट योहान मैनजिम्बी ने आकर 2 गोल मारे, वहीं रूबन बारगास ने 84वें मिनट में गोल किया। ग्रेंट जाखा ने आखिरी मिनट में एक पेनल्टी मारकर स्विट्जरलैंड का 4th गोल मारा। बोस्निया की तरफ से मोहारेमोविच को 80वें मिनट में रेड कार्ड मिला डॉक्सो यानी डिनायल ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से। महमिच ने 93rd मिनट में एक गोल मारा। इस जीत के चलते स्विट्जरलैंड ग्रुप बी में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और बोस्निया 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। ग्रुप बी की अगर बात करें तो दोनों टीम्स कनाडा और कतर कल एक तनावग्रस्त मैच में शामिल हुए। कनाडा ने 6 गोल मारकर कतर की टीम को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक हैट्रिक मारी। कतर के हनम अहमद और असीम मडीबो को रेड कार्ड दिखाया गया। कनाडा को इस मैच में 19 कॉर्नर मिले जिन्हें यूज करते हुए उन्होंने कतर को बुरी तरीके से हरा दिया। इस जीत के चलते कनाडा अब ग्रुप बी में पहले स्थान पर आ गया है और कतर अभी 4th और आखिरी स्थान पर है।

चलिए अब बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच एक अहम मुकाबला देखने को मिला। होम टीम मेक्सिको ने साउथ कोरिया के गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए 50वें मिनट में गोल दाग दिया। बॉल हवा में थी और साउथ कोरिया के गोलकीपर और सेंट्रल डिफेंडर के बीच मिसकम्युनिकेशन के चलते गोलकीपर के हाथ से बॉल नीचे गिर गई और मेक्सिको के प्लेयर रोमो ने गोल कर दिया। इस जीत के चलते मेक्सिको ग्रुप ए में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बनी। वहीं साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ग्रुप ए की बाकी दोनों टीम्स यानी साउथ अफ्रीका और चेकिया के बीच भी मैच हुआ जो 1-1 से ड्रॉ रहा। चेकिया के मिडफील्डर सैडिलेक ने 6वें मिनट में गोल मारकर चेकिया को 1-0

इसे आगे कर दिया था। साउथ अफ्रीका पूरे मैच में गोल मारने की कोशिश करता रहा और 83वें मिनट में साउथ अफ्रीका को एक पेनल्टी मिली। चेकिया के प्लेयर ने पेनल्टी बॉक्स में हैंडबॉल किया जिसके चलते साउथ अफ्रीका को पेनल्टी दी गई और साउथ अफ्रीका के प्लेयर मोकेना ने गोल दागकर मैच 1-1 की बराबरी पर ले आया। इस मैच के चलते दोनों चेकिया और साउथ अफ्रीका 1-1 अंक के साथ ग्रुप ए में तीसरे और चौथे स्थान पर है।

वहीं आज होने वाले मैचेस पर नजर डालें तो ग्रुप सी में एक अहम मुकाबला होगा स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच। स्कॉटलैंड अपना पहला मैच जीतकर 3 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं मोरक्को 1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमें मैच जीतकर राउंड ऑफ 32 में जाने के सपने देख रही होगी। वहीं ग्रुप सी में आज ब्राजील और हैटी के बीच भी ये एक मैच खेला जाएगा। ब्राजील का पहला मैच मोरक्को के साथ ड्रॉ हो गया था, तो वो आज हैटी को हराकर ग्रुप सी में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगे। हैटी के सामने ब्राजील की कड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आज के बाद ग्रुप सी किस तरफ मुड़ता है।

वहीं ग्रुप डी की बात करें तो आज यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच जीत गए थे और यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को 2-0 से हराया था। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसकी जगह राउंड ऑफ 32 में पक्की हो जाएगी। यूएसए होम सॉइल पर खेलेगा और लोकल क्राउड का सपोर्ट का फायदा उठाते हुए ये मैच जीतना चाहेगा। वहीं ग्रुप डी के दूसरे मैच की बात करें तो टर्की और पैराग्वे के बीच ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार गई थी और आज प्रयास करेंगी कि आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ा जाए। जो टीम आज का मैच हारती है उसका राउंड ऑफ 32 में क्वालिफिकेशन बेहद मुश्किल हो जाएगा।

0: तो जहां हम बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ की यानी फीफा वर्ल्ड कप की, तो हम ऐसे में क्रिकेट वर्ल्ड कप को कैसे भूल सकते हैं संचित। और अब फुटबॉल के मैदान से निकल के हमें क्रिकेट के ग्राउंड में भी तो पहुंचना है, जहां पर भारतीय जो टीम है, हमारी महिला टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और बिल्कुल लगी हुई है कि किस तरह से हम एक बार फिर इतिहास को दोहराएं और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी घर ले आएं। तो क्या है खबर क्रिकेट के मैदान से संचित?
1: जी बिल्कुल कविता, ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच में मैच खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रनों से हरा दिया। स्कॉटलैंड की तरफ से कार्टर ने 59 रन और लिस्टर ने 33 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से मैथ्यूज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फ्लेचर ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए और एलेन ने 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 146 पर आउट करके ये मैच 7 रनों से जीत लिया। पहली पारी में वेस्ट इंडीज के लिए कैम्बल ने 26 बॉलों पर 36 रन बनाए और टेलर ने 19 बॉल पर 47 रन बनाए। वहीं आज की बात करें तो न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एक बहुत ही अच्छा मैच खेला जाएगा। आज रात 11 बजे ये मैच T20 वर्ल्ड कप के मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीती हैं और इसका मतलब ये है कि ये मैच दोनों के लिए एक मस्ट विन मैच हो चुका है। न्यूजीलैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज से और दूसरा मैच श्रीलंका से हार गया था। आइए चलते हैं कविता की तरफ।
0: जी हाँ बिल्कुल, और क्रिकेट की खबरों का जो रोमांच है वो अभी जारी है, क्योंकि अभी तो बात हमारे पुरुषों की बाकी है। यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो खेल रहे हैं अपना वनडे सीरीज। पहले दो मैच में धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ कल होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिसमें KL राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। इंडिया अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। मैच में पिछले अगर बात करें तो पिच की, वहां पर जिस तरह से स्टेडियम है वहां पर स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती है। हालांकि शुरुआत में कुछ

0: ओवर जो है वो थोड़ा सा जो तेज गेंदबाज हैं उनके भी फेवर में जाता है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा बन जाता है। वहीं अगर मौसम की बात करें संचित, तो शनिवार को चेन्नई का मौसम खराब रहने वाला है जो मैच पर असर डाल सकता है। एक और बात है यहाँ पर कि एक रिहेबिलिटेशन को पूरा करने के बाद इस मैच में हर्षित राणा जो है वो टीम में वापस आए हैं और ये तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत के जो चोटिल खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी जो अनुपस्थिति है उसमें निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का जो विकल्प है वो मिल गया है। इससे टीम का जो प्रबंधन है वो ब्रिटेन दौरे से पहले उनकी जो फॉर्म और फिटनेस है उसका आकलन करने का भी यहाँ पर एक मौका जो है वो मिल जाएगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो उन्होंने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले दो वनडे में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा अक्सर हम अफगानिस्तान को लटफेर के लिए जानते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं उनकी जो टीम है। हालांकि फिर भी यहां पर जो आखिरी वनडे मैच है उसमें जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही दम लगाएगी, लेकिन देखना यही होगा कि क्या इंडिया की टीम उन्हें जीतने देगी। फिलहाल अभी तो अच्छा प्रदर्शन इंडिया का है और देखना है कि ये मैच कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर हम क्रिकेट की खबरों को विराम लगाएंगे और आपको लेकर चलेंगे हम अभी यहाँ पर तलवारबाजी की जगत में, जहाँ पर हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो है वो खेल रहे हैं। इसका जो आगाज है वो आज से भारत मंडपम में 24 जून तक चलेगा। इस रोमांचक प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों और 400 से अधिक जो एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में भी बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं और इनकी जो अगुवाई है, भारत का जो नेतृत्व है दल का, वो एकमात्र फेंसिंग ओलंपियन सीए भवानी देवी कर रही हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी के पास जो इस रिपोर्ट के साथ तैयार हैं।
1: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 30 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आज इस आयोजन का रंगारंग उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मजबूत देशों के तलवारबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुषों और महिलाओं के फाइल, एपी और सेबर मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनवाते भारतीय तलवारबाजी टीम के कोच ज्ञानेंद्र कुमार को, जो बता रहे हैं फेंसिंग क्या है और कैसे खेला जाता है, साथ ही भारत के लिए पहला दिन कैसा रहा।
2: धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका आकाशवाणी का धन्यवाद जो कि मुझे बुलाया इस मंच पे। जो एशियन चैंपियनशिप है इंडिया में पहली बार हो रहा है और ये एक पूरे कंट्री को देखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि फेंसिंग होती क्या है। तो मोस्टली जो एशियन कंट्री फेंसिंग में बहुत आगे, मतलब जैसे यहाँ पे 70% ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन कंट्री के हैं, जैसे चाइना, जापान, कोरिया और हांगकांग है, ये सब ओलंपिक

0: एक थर्ड इवेंट होता है जो सैबर होता है, जो कि आपका कमर से ऊपर जितना भी होता है उसमें आपका हेड भी इंक्लूड होता है, आर्म्स भी इंक्लूड होता है, वो इवेंट होता है। ये तीनों इंडिविजुअल इवेंट भी खेले जाते हैं और तीनों टीम इवेंट खेले जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल में तो पर कंट्री चार चार प्लेयर होते हैं, अपना अपना पूल खेलते हैं, पूल के बाद फिर नॉकआउट जो क्वालिफाई करता है नॉकआउट खेलता है, और जो जीतता रहता है आगे बढ़ता जाता है, जो हारता है आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब इंडिविजुअल खत्म होता है तो फिर टीम इवेंट भी होते हैं। टीम इवेंट में टोटल चार फेंसर होते हैं, जिसमें एक रिजर्व होता है और जो कि हम रिप्लेस करते रहते हैं, अगर कोई आप खेलता तो चेंज कर, उसमें टोटल तीन फेंसर खेलते हैं और वो 45 टच का मैच होता है। उसमें एक रिले की तरह होता है, जैसे कि एक दूसरे से 5 पॉइंट का एक आदमी खेलता है और 3 मिनट, फिर जितना स्कोर होता है उसी आगे से फिर आगे बढ़ता रहता है। फर्स्ट पहले 45 खत्म करता है और विन करता है। ऐसे टीम इवेंट होते हैं। पूल में 5 टच होते हैं, एक पूल में मैक्सिमम 7 फेंसर और मिनिमम 5 फेंसर होते हैं। फिर उसके व्याप पे जितने पूल कंप्लीट होने के बाद फिर नॉकआउट की जो सीडिंग होती है, जो पूल की रैंकिंग हिसाब से फर्स्ट की लास्ट से फिर सेकंड की सेकंड लास्ट से, ऐसे पूरे नॉकआउट सिस्टम बनता है। जो आगे जीतता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है।
1: तलवार में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या?
0: हाँ, तलवारों में भी काफी डिफरेंस है। जैसे कि फॉइल का होता है, उसका जो प्रेशर होगा होता है, ओनली थ्रस्टिंग वेपन, मतलब आप सिर्फ कोचने वाला होता है कि आगे से टिप से पॉइंट आप हिट करेंगे तभी वो 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए। और उसका जो शेप होता है वो भी बाकी उससे पतला होता है थोड़ा। जैसे आप लेंथ होती है, लेंथ तो लगभग ईपी और फॉइल के बराबर होती है। ब्लेड जो ब्लेड का होता है एरिया, लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर की होती है, और सेम ऐसे ईपी का है, उसका 750 ग्राम का प्रेशर चाहिए। जैसे फॉइल में 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए, उसमें ईपी में 750 ग्राम का प्रेशर से हिट करेंगे तभी आपका पॉइंट रजिस्टर होगा। और सैबर है जो कट एंड थ्रस्ट वेपन, जैसे कि आप उससे, मगर उसमें प्रेशर नहीं होता, आप बस जैसे आप कट करके मार भी सकते हैं। जैसे तलवार, ऐसे जैसे तलवारबाजी होती है, मारते हैं एक दूसरे को, कहीं भी टच हो गया तो भी पॉइंट मिलता है, ये सिस्टम होता है।
1: आज कॉम्पिटिशन खेले गए लड़कों और लड़कियों के, कोई उम्मीद नजर आज नहीं आई, जिसको मैंने देखा वो हार गए, क्या रहा आज?
0: ये सर अभी तो जो फेंसिंग है इंडिया में डेवलप फेज में है, काफी अच्छा कर रहे हैं। पहले जैसे था, आज से कुछ साल पहले था, तो अभी हमारे तो पूल क्वालिफाई भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे जैसे फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और हमारी जो गवर्नमेंट है काफी इन्वेस्ट कर रही है, काफी प्लेयरों को ध्यान दे रही है, तो वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको भी पता चल रहा है कि हमारी गलतियां कर, उसको सीख लेके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं, जैसे पहले पूल से आउट होते थे मगर अभी अब नॉकआउट में भी पहुंच रहे, फिर नॉकआउट से धीरे धीरे 2-3 बाउट जीत भी रहे हैं, आगे तक आ रहे हैं, 16 तक आ रहे हैं, 32 तक आ रहे हैं। अभी जैसे आज तो फॉइल गर्ल्स का और सैबर बॉयज का हुआ, जो कि 64 के मैच सैबर बॉयज जीते हैं और फिर जाके 32 में हारे। पहले तो ऐसे टीम पूल से आउट होते थे मगर अभी ग्रो कर रहे हैं।
1: यहाँ कुछ मेडल मिलेगा, चाहे हम ईपी की बात कर लें, फॉइल की बात कर लें, सैबर की बात करें, कहीं लग रहा हूँ।
0: हाँ सर, उम्मीद है काफी। देखिए अभी से ईपी के लड़के भी काफी अच्छा कर रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं और टीम्स में भी हैं, और हमारी जो लास्ट ओलंपिक खेली हुई भवानी देवी, मिस भवानी देवी सैबर में, उनकी भी काफी मतलब दावेदारी है कि वो भी मेडल आ सकता है। ऐसा नहीं कि मेडल की उम्मीद है ही नहीं, मेडल की उम्मीद है अभी, अब देखते हैं अभी कौन से इवेंट में आने का चांस है।
1: पहली बार भारत में आयोजित फेंसिंग के इस तरह के बड़े आयोजन से युवा तलवारबाज भी बेहद उत्साहित हैं। आइए आपको ऐसी ही एक फेंसर से मिलवाते हैं जो बिहार के मोतिहारी से आती है।
2: मेरा नाम केसर राज है, मैं यहाँ पे मैचेस देखने आई हुई थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहा है और इंडिया होस्ट कर रहा है, इस करके हम लोग बस मजे करने आए थे, कॉम्पिटिशन देख के सीखने के लिए। पर यहाँ पे हमें ओलंपिक मेडलिस्ट दिखे तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई, अच्छा लग रहा है देख के कि इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है और इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने एशियन चैंपियनशिप को पूरे अच्छे से कंडक्ट कराया, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलतियों के। हम लोग बाहर खेलने जाते हैं अदर कंट्रीज में, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा कराया है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है।
1: कितना एक्साइटमेंट है यहाँ कुछ देखने के लिए?
2: बहुत एक्साइटमेंट है, पूरा माहौल बहुत एनर्जेटिक है, सारे फेंसर्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ हार भी रहे हैं बट कोई बात नहीं, अगली बार वो अच्छा करेंगे।
1: आपके कौन पसंदीदा एथलीट फेंसर आए हैं जिसको आप देखना चाहती?
2: एक तो सिब्बर के हैं ओसांगो, इंडिया के मेरे पर्सनल फेवरेट फेंसर हैं करण सिंह गुज्जर, तो ये दोनों।
1: अपने बारे में थोड़ा बताइए।
2: मैं तो बिहार में ट्रेनिंग करती थी, स्कूल से ज्वाइन किया था, स्कूल में एक सर आए थे बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ से ज्वाइन किया था। मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, मैं इकलौती लड़की हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे मेडल्स आए, तो मुझे खेलो इंडिया स्कीम में फिर इंडक्शन हुआ मेरा, और फिर मैं ASI ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया, अभी मैं करंटली आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कर रही हूँ।
1: बिहार में कहाँ से है और किस स्कूल में पढ़ी है, कैसे आप यहाँ तक पहुँची?
2: मैं बिहार में मोतिहारी से हूँ, और मैं पहले कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ती थी, तो मैंने वहाँ से फेंसिंग स्टार्ट की थी, पर फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, जीवन इंटरनेशनल स्कूल, तो मैंने वहाँ से खेला, और जीवन इंटरनेशनल स्कूल से मैंने स्कूल नेशनल्स में गोल्ड मेडल सिक्योर किया और सिल्वर मेडल सिक्योर किया था स्कूल नेशनल्स में, और फिर अभी हाल ही में मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने गई हुई थी इंडोनेशिया जकार्ता, तो मैं अभी वहाँ से खेल करके आई हूँ।
1: भारत की ओर से अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मजबूत दल मैदान में उतरा है, घरेलू दर्शकों को भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन और

0: पदकों की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता आगामी 2026 एशियाई खेलों की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है इस तरह के आयोजन से भारत में फेंसिंग खेल को नई पहचान मिलेगी। आज पहले दिन भारत की महिला खिलाड़ियों ने फाइल और पुरुषों ने सेबर इवेंट में भाग लिया। हालांकि आज का दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा और राउंड ऑफ 32 से आगे भारतीय फेंस तक नहीं बढ़ पाए। मिलते हैं राउंड ऑफ 32 में हार कर बाहर होने वाली ऐसी ही एक तलवारबाज से।
1: हेलो आकाश वाणी लिसनर्स, मेरा नाम कनुप्रिया चावला है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी एज 18 इयर्स है। मेरा ये तीसरा सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप है और पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो मेरे को फील हुआ। हालांकि मेरा रैंक 20th आया, लेकिन मेरे को खेल के काफी अच्छा लगा।
0: क्या हुआ आज के इवेंट के बारे में जरा बताइए, राउंड ऑफ 32 तक पहुंची, वहां से बाहर हुई।
1: सबसे पहले तो हमारा पूल टेबल था जिसमें मैं 4 बाउट्स जीती थी और 2 हारी थी, उसकी वजह से मेरा रैंक 19 आया और उसी के कारण मेरा पहला बाउट इंडिया के साथ ही हो गया था और मैं वो जीती 59 से। उसके बाद मेरा फिलीपींस के साथ था, वो काफी स्मार्ट फेंसर थी, काफी अच्छे से उसने खेला, उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और काफी फास्ट थी। हालांकि मेरा स्कोर उसके साथ 15-6 था, लेकिन मुझे उससे खेल के काफी एक्सपीरियंस मिला और मैंने मेरी गलतियों से सीखा और मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार जो मैंने अब की बार सीखा है उससे मैं और अच्छा खेलूं।
0: कॉम्पिटिशन लेवल कैसा
1: है? हाई लेवल है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप है और एशिया की काफी लड़कियां जो यहाँ खेल रही है, ओलंपियंस है, उनकी टीम ओलंपिक्स खेली हुई है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, तो लेवल काफी हाई है। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाए।
0: नई दिल्ली में जारी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ भारत मंडपम से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: तो तलवारबाजों के कारनामे तो अभी देखने बाकी हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें हम कुछ अच्छे तलवारबाज हमें मिले जो आगे चल के भारत का जो प्रतिनिधित्व जो है वो कर पाए आने वाले और भी टूर्नामेंट में। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा हम हॉकी के टर्फ की ओर, जहां पर FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को एक तरफा मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। मनदीप सिंह ने 7वें मिनट में और शिलानंद लाकड़ा ने 13वें मिनट में, नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोलों की बदौलत भारत ने शानदार जीत हासिल की है। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह और मिडफील्ड से खेल को संभालने के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं मनप्रीत सिंह भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में बेल्जियम के जॉन डोहमैन और नीदरलैंड के ट्यून डी नुइजर, ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकेन डेन और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडिल्टन के बाद 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पोजीशन कंट्रोल करके मैच की अच्छी शुरुआत की और जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की जो बढ़त है वो दिला दी। पहले क्वार्टर को खत्म होने से ठीक पहले लाकड़ा ने भी अपना जो हुनर है वो दिखाया। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने वापसी करने के इरादे से अपना खेल बदला जरूर, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के सामने ये सारे ही खिलाड़ी कुछ कम नजर आते रहे। भारत ने दूसरे हाफ में भी गोल करने की कोशिश की और टीम को सफलता 35वें मिनट में मिली जब नीलकांत शर्मा ने जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए शानदार 16 रन बनाया और गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए और बराबर मौके बनाए। जर्मनी को आखिरकार तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 20 सेकंड बाकी रहते एक गोल करने का मौका मिला, जिसका फायदा उठाते हुए राफेल हार्टकॉफ ने 45 मिनट में गोल करके स्कोर को 3-1 कर दिया। लेकिन आखिरी क्वार्टर में जर्मनी की इस रफ्तार के बाद भी जो भारतीय टीम है उनके हाथों से जर्मनी की टीम जो है वो जीत नहीं छीन पाई और जीत का जो सहरा सजा वो सजा भारतीय टीम के नाम। अपना अगला मुकाबला भारतीय टीम अब खेलेगी और देखते हैं कि उस मुकाबले में किस तरह से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हैं। वही बात करते हैं अब महिला हॉकी की भी। FIH महिला नेशंस कप में पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और चिली के बीच 20 जून को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मैच का जो महत्व है और टीम का जो फॉर्म है, ये दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम को

0: एफआईएच प्रो लीग में प्रमोशन मिलेगा। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और अपने पिछले तीनों पूल मैच अमेरिका, जापान, उरुग्वे के खिलाफ जीतकर अजय रही है। दूसरी ओर चिली की टीम ने भी पूल बी में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उरुग्वे के खिलाफ पिछले रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-2 से जीती थी, जिससे दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर दागे थे। हेड टू हेड की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में हैं। पिछले 6 भिड़ंत में से भारत ने 5 जीत हासिल की है, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी मुकाबला एफआईएच नेशंस कप का 2022 में हुआ था, जहां भारत ने चिली को 3-1 से हराया था। तो मुख्य जो पॉइंट है और जो मुख्य खिलाड़ी है वो है स्टार ड्रैग फ्लिकर अटैकर दीपिका, जिन्होंने उरुग्वे के खिलाफ मैच में शानदार लय दिखाई, और कप्तान सलीमा टेटे, जो मिडफील्ड को संभालते हुए काउंटर अटैक का जो नेतृत्व है उसे संभालेंगी। और चिली की टीम अपने मजबूत डिफेंस और शुरुआती हमलों पर निर्भर करती है, इसीलिए भारतीय डिफेंस को भी शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। चलते हैं हम अपने सहयोगी संचित के पास अन्य खबरों के लिए।
1: हाँ जी, आइए सुनते हैं मकाऊ ओपन सुपर 300 में क्या रहा। अश्विता चालेहा ने शुक्रवार को कोरिया की किम मिन सन पर शानदार जीत दर्ज करते हुए मकाऊ ओपन सुपर 300 में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। अश्विता ने किम को 21-16, 21-18 से सिर्फ 37 मिनट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला कोरिया की ही एक अन्य खिलाड़ी पार्क गायुन से होगा। अश्मिता और किम के बीच पहला गेम 14-14 तक बराबरी का रहा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 4 अंक जीतकर बड़ी बढ़त बना ली और फिर से बरकरार रखा। दूसरे गेम में किम ने पहल की और मध्यांतर तक अश्मिता पर 11-5 की बढ़त बना ली, लेकिन बाएं हाथ की भारतीय खिलाड़ी ने दबाव बनाए रखा और 16-18 के स्कोर पर लगातार 5 अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ अश्मिता चालेहा अब सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और आकाशवाणी की तरफ से हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
0: और शुभकामनाएं हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर नीरज चोपड़ा को भी, जो कि आज दोहा डायमंड लीग में एक बार फिर से मैदान पर उतर रहे हैं और चोट की वजह से एक लंबे समय तक प्रतियोगिताओं से दूर रहे थे और अब वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि जो उनकी लय है वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जो उनका मुकाबला होगा वो होगा श्रीलंका के स्टार रुमेश थरंगा से, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। नीरज चोपड़ा अपनी वापसी पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: Always feel amazing to back in competition season and in Doha especially, and little bit nervous after speaking in front of so many people after long time. So I had some injury last year before Tokyo World Championship. We work a lot and I also compete in Tokyo, but that was not I don't think so that was good decision because I already know that I have some problem, but that was last competition, so I decide to compete there, and then we work a lot and then I sit together with my team and my physio, and then we work on every part, and we just decide. We start throwing 1.5 months ago, and we take our time. I talk to Doha and I ask them if it's possible if I will let you know in very short period, like one week ago, and then they said yes, and then we decide after my last session, okay, let's compete in Doha. I was in Mecklingen, it's a Swiss Olympic training center there, so I really like that place. It's in mountain and very quiet, so you can focus on your things and on your technique, so I really like that place.
0: तो अब देखना होगा, क्योंकि आज देर रात नीरज चोपड़ा जो है वो अपने मुकाबले खेलेंगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट नीरज चोपड़ा। चलिए अब चलते हैं शूटिंग की तरफ, जहां पर शूटिंग जगत से आ रही है बहुत ही शानदार खबरें, क्योंकि भारत जो है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में खेल रहा है, जहां पहला दिन तो शानदार रहा, उसमें 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की और पदक तालिका में एक मजबूत स्थिति जो है वो अपनी दर्ज करवा ली। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया, खासकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का दबदबा साफ दिखा, जहां पर सेजल कामले ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया और उनकी सटीकता और शांत खेल ने उन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचाया और भारत के लिए पहले दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की। मेडल जीतने के बाद सेजल ने क्या कहा, लीजिए सुनिए।
3: feeling grateful for all the hard work I've been through and all the sacrifices. And well, I'm most grateful to my coaches, my parents, and my friends, and my

0: YouTube.
1: Yeah, it's like we have seen each other's worst and each other's best, and we have trained together for so long, and it feels so good to win together.
2: इसी के साथ यहाँ पर भारत की ही हिमांशी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, कांस्य पदक जीत कर देश को खुशी दिलाई। इसके बाद अगर बात करें हम आज के मुकाबलों में भी, तो आज का दिन भी भारतीय शूटिंग के लिए खुशी का दिन लेकर आया। 25 मीटर रैपिड पिस्टल में समीर ने गोल्ड जीता, तो वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में महिला जूनियर में प्राची गायकवाड़ ने सिल्वर मेडल जीता। अगर अंक तालिका पर नजर डाले तो भारत इस वक्त 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 7 पदक के साथ टॉप पर है। समीर ने क्या कहा मेडल जीतने के बाद, आइए सुनते हैं।
3: Feel great to be a junior world champion in 2022 world championship. I missed the gold. I was second, but this time I want to claim the gold, be the world champion.
2: तो यहाँ पर वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। चलिए अब वर्ल्ड चैंपियन से निकलकर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तरफ चलते हैं, जहां पर स्टेज 2 के जो मुकाबले हैं उसमें आज 5 मैच जो है वो खेले जाने थे। 5 मैचों में मीनाक्षी, स्नेह, निखिल, प्राची और दीपक का मैच होना था। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 4 बॉक्सर्स हैं यहाँ पर, स्नेह को छोड़कर निखिल, प्राची और दीपक, उनमें से सभी का जो मेडल है वो पक्का हो चुका है। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जहाँ पर हमारी जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, उनको घरेलू इवेंट्स में उनकी जो गैर मौजूदगी थी उसकी वजह से उन्हें रिजर्व में रखा गया है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यहाँ पर जो एशियन गेम्स होंगे उनमें उनकी जगह नहीं है। फिलहाल जो टीम में है उनमें काफी सारे नाम है और इस वक्त समय की कमी है, तो हम आपको अपडेट जो है वो अगले कार्यक्रम में जरूर देंगे। इसी के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे कविता शर्मा
4: और संचित जैन
2: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ आप सभी से लेते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी से अनुमति। नमस्कार, गुड नाइट।
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:30 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका का। तो आइए सुनते हैं इस माला का ये पहला मोती जो है फिल्म अग्निपथ से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम ने।

कुछ गीत लिखने वालों ने सिर्फ गीत नहीं लिख दिए हैं, वो दिल के जज्बात लिख दिए हैं, वो बातें लिख दी हैं जो कहने में कभी इंसान झिझक जाता है, कभी वो ठहर जाता है, कभी वो सोच में डूब जाता है, और कभी वो इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये बात कहे या ना कहे, या इस मौके पर वो खुश हो या रोए, या वो किस तरह से रिएक्ट करे। ऐसे वक्त में जो शायर होता है, जो गीतकार होता है, जो गीत लिखता है, वो भी उस कर्ब से, उस दर्द से गुजरता है, और उस दर्द को या उस खुशी को जो वो बयान करता है तो हम सभी के दिलों पर चढ़ जाता है, हमारे दिलो दिमाग पर वो असर डाल देता है कि आप अपनी कैफियत को, अपनी उस सिचुएशन को उससे जोड़कर देखने लगते हैं। हर एक लफ्ज, हर एक शेर आपकी बयान हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये गीत था, और अगला गीत भी कुछ कुछ ऐसा ही है। फिल्म है तमाशा, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, और मुझे ये गीत बहुत बहुत बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने गीत मालिका कार्यक्रम सुना। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

0: ठीक 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। और ठीक 10:10 पर आप सुनेंगे माटी के रंग। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्वेता सुष्मिता झा से मैथिली गीत। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए, अब से कुछ ही देर में समाचार संध्या सुनेंगे आप।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के

0: के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर

0: विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के

0: दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जित

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार्क गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग।

0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संगे मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। यह देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नज़र मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है, बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کا حق

रात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जुनूबी कोरिया की किम मिनसन को सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हरा कर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जुनूबी कोरिया की पार्गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की अशिका जयसवाल को 22-20, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

چشم موسیٰ بھی تیری شاہد ہے.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री

0: विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्यरात्रि के 1:10 हुए हैं। गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के पुराने गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सबसे पहला गीत फिल्म आनंद से, जिसमें आवाज है मन्ना डे की, बोल योगेश के हैं और संगीत से पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जी हाँ, जिंदगी तो ऐसी ही है कि कभी आपको हंसाती है और कभी रुला देती है। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनवाएंगे, फिल्म है कटी पतंग। ये भले ही शाम नहीं रात का सफ़र है, लेकिन इस गीत के ज़रिए आप जानेंगे कि ये शाम कितनी मस्तानी है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कौन सा गीत आपको सुनवाने वाले हैं हम। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म धरती से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। अब आपको दीवानेपन की ओर लेकर चलते हैं, जो कि आप सुनेंगे गीत महबूब की मेहंदी से। फिल्म किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है संगीत।

ये खूबसूरत गीत इंदिवर का लिखा हुआ था, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम से ये गीत। अगला गीत आ रहा है लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में, फिल्म है एक दूजे के लिए। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दोस्तों, आपका दिल है या शीशा, ये आपको तय करना है। लेकिन जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है।

जी हाँ, हमने कहा ही था कि ये कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। लेकिन जब दिल टूटता है, तभी प्यार की जो अहमियत है वो समझ आती है। आप को अब अगला गीत सुनवाते हैं, उषा मंगेशकर और कल्याणी की आवाज़ों में।

0: हरकत, जुर्म बताओ, हम करें मरम्मत। सड़क पे चलते चलते छिलके पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरी खड़ा था। किसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध करिए दरबार में ले आया।
1: उफ, वीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। गिरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है, ना दमड़ी का ना ढेले का। किसी भी चिकनी फिसलन पर छह बार ले जाओ, गिराओ इसको। जिस केले पर ये फिसला है वो केला ढूंढ

0: चक्कर है सर, घन चक्कर।
1: घन चक्कर,
0: घन चक्कर, सुना सा सुनाई देता है। ये शायर है सर, दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है।
1: समझे।
0: यही है वो हजरत, बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, वोर करते हैं ये, कोई कानून ये मानते ही नहीं, जितना रोको इन्हें और करते हैं ये, खुद तो करते नहीं, सब कराते हैं ये, पेन में बारूद भर के चलाते हैं ये, ईश, इनका साया भी रहने न दो पास में, दफन कर दो इन्हें, जाओ इतिहास में।

हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कुदरत से किशोर कुमार की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। हाँ, ये सुनते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना।

0: इसी तरह अगर कोई प्यार का इजहार कर दे तो मना कौन कर सकता है। और इसी तरह आप सुन रहे थे ये गीत, और इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त और सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम ये आर लाइव न्यूज 24x7 पर।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मध्य रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।

0: भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shivangi. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rairangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will pass

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। मैं हूं आपके साथ कीर्ति और नॉनस्टॉप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं, गीत बहार। जी हां, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपके लिए गानों की जो लिस्ट है वो तैयार है और बैक टू बैक गीत आप तक आने वाले हैं। तो इस सफर में मैं और आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे 3 बजे तक। तो साथ रहिएगा और एंजॉय करिए इन गीतों को।

0: इसी के साथ हम चलते हैं और गीत बहार का कार्यक्रम यही समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में 1 रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं अंजना सुधाकर और मालाडी वासावी।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 4:13। श्रोताओं, आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में चारण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति। वायलन पर संगत कर रहे हैं जी राघवेंद्र प्रसाद, जबकि मृदंगम पर संगत की है R. नारायणन ने।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने चारण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति सुनी। वायलन पर जी राघवेंद्र प्रसाद, जबकि मृदंगम पर आर नारायणन ने संगत की थी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि पांच बजकर बीस मिनट पर आप देशभक्ति संगीत का आनंद ले सकते हैं।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप रोहित प्रसन्ना द्वारा बजाए बांसुरी पर राग नट भैरव सुनेंगे। 6:00 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार आप 6:05 पर सुन सकते हैं।

6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 का वक्त होगा कार्यक्रम चिंतन का। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस।

0: सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपये की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है, ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को

0: खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4th स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of United Kingdom, who has served in the role since July 2025.

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर।

सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है।

印度这里广播电台，听众朋友们，现在是普通话时间，从印度时间5:15到6:45和16:17:30，向亚洲播送普通话节目。早间广播频率为15280千。